0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ठंडा ठंडा मौसम में राव रेडियो दोस्त दीपाली रोज की तरह हाजिर बाड़ी प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल लेके। दोस्तों सवेरे सवेरे जब ले हम रउआ से ना मिली तब ले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा, त श्रोता लोग सवेर ता हो गइल बा। हमरा पता बा कि रउआ सब अपना कान के रेडियो सेट के पास लगावले बानी आज के घरेलू नुस्खा सुने खातिर। ता अब हम अपना कार्यक्रम की शुरू करी, उससे पहले रउआ सब की दीपाली की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। दोस्त लोग आज जानल जाए सबसे पहले चमकत त्वचा खातिर कुछ पौष्टिक पेय के बारे में। दोस्तों अपना डाइट में शामिल करी जूस और पानी। पेय पदार्थ के हमनी के डाइट में एगो अलग ही भूमिका होला, फिर भले ही वो पेय पदार्थ पानी हो के या जूस। एके नियमित सेवन से हमनी के त्वचा में निखार आवे के साथ ही शरीर के भी भरपूर ऊर्जा मिलेला। फ्रूट जूस जहां आयरन और विटामिन से भरपूर होला, उन्हें वेजिटेबल जूस यानी सब्जी के जूस शरीर खातिर उपयोगी पोषक तत्व से युक्त होला। तरह के जूस के सेवन शरीर खातिर फायदेमंद होला। यदि रउआ बेहतर स्वास्थ्य पावे के इच्छा रखतनी तो रउआ आज ही से अपना डाइट में जूस और पानी के उचित मात्रा के शामिल करे के होई। कम मात्रा में पानी पिए से हमनी के शरीर में पानी के कमी हो जाला, जेके प्रभाव शरीर के साथ ही त्वचा पर भी देखल जा सकेला। त्वचा के चमक के बरकरार रखे खातिर रउआ हर दिन भरपूर मात्रा में पानी के सेवन करे के चाही। पानी हमनी के त्वचा के कोशिका के भी प्रमुख तत्व होला। हमनी के त्वचा के बाहरी नमी के बरकरार रखे खातिर ओई पर मॉइस्चराइजर लगावे निसन, ओई प्रकार से त्वचा के अंदरूनी नमी व पोषण प्रदान करे खातिर हमनी के पानी के अधिक से अधिक सेवन करे के चाहिए।

व त्वचा के लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट के भरपूर मात्रा होला। चुकंदर के रस भी स्वास्थ्य खातिर बहुत फायदेमंद होला। ओलोंग टी के ब्लैक ड्रैगन टी के नाम से भी जानल जाला। चाय के ई विशेष प्रकार रोज चाइनीज रेस्टोरेंट में देखे के मिली। ई चाय में भरपूर मात्रा में पॉलीफिनोल्स होला, जौन की एक्जिमा और झुरी जैसन समस्या से त्वचा की सुरक्षा करेला। काला घेरा, चेहरा पर झुरी जैसन बढ़त उम्र के लक्षण के कम करे व वजन के नियंत्रित करे में ओलोंग टी बड़ा ही कारगर होला। त्वचा के लालीपन व खुजली के खत्म करे के साथ ही एलोवेरा के जूस त्वचा संबंधी अन्य समस्या जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस में भी औषधि के तरह काम करेला। शुद्धि, पाचन क्रिया के बढ़ावल, आर्थराइटिस में कारगर व शारीरिक क्षमता के बढ़ावे के साथ ही एलोवेरा जूस के अनगिनत फायदा होला। रोजाना एक कप एलोवेरा जूस के सेवन हमने के स्वास्थ्य व त्वचा संबंधी कई गो समस्या के निदान में कारगर है। उबालल हरा पत्ती से बनावल जाला। यह वजह है कि ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पॉलीफिनोल्स होला। जौन एगो आइसन केमिकल कंपाउंड है, जौन के पिगमेंट एंटी एजिंग के तौर पर कार्य करके त्वचा में झुरी के कम कर ओई के फोटो प्रोटेक्शन देवेला। विशेषता ओके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होला। बाल खातिर भी ग्रीन टी बेहतर है। यदि हम शुद्धता की बात करी तो चाय में शुद्धता के मामला में ग्रीन टी से बेहतर कौनो नहीं खे। टी भी ग्रीन टी के समान पत्ती से ही बनावल जाला। स्वीट, स्पाइसी, चॉकलेट आदि ब्लैक टी के अलग अलग फ्लेवर्स होला। विटामिन ई और सी के साथ ही ब्लैक टी में मौजूद स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट त्वचा पर प्रीमैच्योर एजिंग के लक्षण के कम करेला। ऐसन एस्ट्रिजेंट के तौर पर काम करेला जैसे चेहरा बेदाग व चमकदार बनेला। ब्लैक टी के बेहतर परिणाम खातिर एके बिना दूध के पी, काहे कि दूध एके एंटीऑक्सीडेंट गुण के घटावेला। कॉफी के सेवन ना करी। कॉफी में कैफीन व शुगर की अधिक मात्रा होखे के कारण इस त्वचा पर कील मुहासा के कारण बनेला। कॉफी में मौजूद टैनिन त्वचा के शुष्क बनावेला। अल्कोहल त्वचा के नमी के सोख त्वचा में ढीलापन लावेला। कॉकटेल, डाइग्यूर्स और मार्गरीटा में शुगर के बहुत अधिक मात्रा होला, जौन त्वचा के नुकसान पहुंचावेला। सोडा में मौजूद शुगर व अन्य सामग्री हमनी के स्वास्थ्य खातिर नुकसानदेह होला।

0: अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर के कम कर देवेला। शरीर व बेहतर स्वास्थ्य खातिर जहाँ तक संभव हो के हमनी के सोडा पिए से बचे के चाहिए। दोस्त लोग, अब हम ले आपन दे आपन देखभाल कार्यक्रम से जाए की अनुमति। खुशी खुशी आपन दोस्त दीपाली के दी जाए के इजाजत। आरुआ सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। फिर होई हमार भेंट काल, तब तक खातिर नमस्कार।
1: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। शिव महाराज मोह माया से दूर रहना सिखाते हैं, शिव महाराज लालच से दूर रहना सिखाते हैं। अब आगे।
2: पापा, प्लीज पापा सुनिए तो।
9: बेटा, मैंने कह दिया ना एक बार, बार बार क्यों जिद कर रही है?
2: पापा, पर हमारी सारी फ्रेंड्स पढ़ रही हैं, हम भी तो कॉलेज जाकर पढ़ना चाहते हैं।
9: औरों की बात अलग है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तुझे पढ़ाया ताकि तुझे देगा, जे तू से डिग्रीजी बोलती है ना, उसी के लिए बस। अपनी मम्मी से पूछ, अपनी बुआ से पूछ, उनके पापा ने बोला था पढ़ाई के लिए।
2: पापा, पर वो टाइम अलग था।
9: क्या अलग था, और अलग था अभी तो क्या, ये तो हमारे यहाँ साड़ो साड़ो से चले आ रहे है। मैं इसके खिलाफ ना जा सके भैया।
2: पापा, आपको शिव जी की कसम, एक बार तो इस बारे में सोचिए।
9: अरे तनु, अच्छा एक बात बता, तेरी मम्मी ने कभी पढ़ाई करी?
2: नहीं।
9: तेरी बुआ ने कभी पढ़ाई करी?
2: नहीं पापा।
9: शिव को मानने वाली बात करती है, पार्वती जी ने पढ़ाई की?
2: पार्वती माता ने? पापा वो तो भगवान थी।
9: अरे वही तो बेटा, जब भगवान होकर उन्होंने पढ़ाई नहीं की तो तू क्यों जिद करे बैठे है? अरे सालों से, जुगों से चले आ रहे हैं कि बेटा पढ़ेगा और बेटी चौका बर्तन संभाले, तो तू चौका बर्तन संभाल, बड़ी हो गई है, शादी के लिए लड़का ढूंढेंगे, तो तब तक काम तो सीख ले, ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़, ठीक है?
2: पर पापा, ये बिल्कुल गलत बात है आपकी।
9: तू बहुत जिद करती है।
10: माफ कीजिएगा, मैं पास ही में अकेला बैठा था, आप लोगों की बातें सुन ली, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ?
2: कौन है आप और हमारी बातें क्यों सुन रहे थे?
9: हाँ भाई मिस्टर, और हम आपकी बात क्यों सुने?
10: नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है?
9: भाया, क्यों हमारे घर के मामले में पढ़ रहा है?
10: देखिए, वो आपकी बातें सुनकर लगा कि बातें बस घर की नहीं है, किसी की पढ़ाई की है, ये किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है।
9: कहना क्या चाहते हो?
10: मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं?
9: मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का खुशहाल जीवन, उसके लिए पढ़ा

0: पढ़ाई करने की नहीं, घर के काम सीखने की जरूरत है। जितना जल्दी काम सीखेगी उतना जल्दी इसकी शादी होगी, उतनी जल्दी इसका परिवार बनेगा। ये पढ़ाई लिखाई लड़कों के लिए है, छोरियों के लिए नहीं।
1: इस जमाने में आप ये कह रहे हैं, भगवान से डर नहीं लगता आपको?
0: भैया इसमें भगवान क्या करेगा, और इसने तो 16 सोमवार के व्रत रखे हैं, तो उसका फल मिलेगा ना इसे, क्यों तनु?
1: भगवान इसे 16 सोमवार का नहीं बल्कि पढ़ाई का फल देंगे।
2: वो कैसे?
1: महादेव की बेटी अशोक सुंदरी के बारे में जानते हैं आप? मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। एक बार अशोक सुंदरी और देवी पार्वती जंगल में थे।
3: रुक जाओ पुत्री, बस करो।
4: नहीं माता, मैं नहीं रुक सकती।
3: अशोक सुंदरी, पुत्री तुम बहुत हट्टी हो गई हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। कोई अपनी माता को इतना कष्ट देता है भला?
4: अच्छा माता, और कोई भी माता अपनी पुत्री को ऐसा कष्ट देती है, क्या ये सही है?
3: अशोक सुंदरी, मैंने कहा ना रुक जाओ, अन्यथा मैं...
5: अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अशोक सुंदरी इधर आओ।
4: अरे पिताश्री, आप? प्रणाम।
5: आयुष्मान भव पुत्री।
3: अच्छा हुआ स्वामी जो आप आ गए, मैं कितने समय से पुत्री के पीछे पीछे भागी जा रही हूँ, लेकिन अशोक सुंदरी रुकी नहीं रही।
5: पर तुम माता से दूर क्यों भाग रही हो पुत्री?
3: देखिए ना पिताश्री, मैंने माँ से कहा कि मुझे वन में क्रीड़ा करनी है, किंतु माता है कि मुझे बांधना चाहती है। अशोक सुंदरी बहुत हुआ, यह सत्य है स्वामी, मैं भला क्यों अपनी पुत्री को बांध कर रखूंगी? तो फिर क्यों आप मुझे क्रीड़ा का आनंद नहीं लेने दे रही थी माता?
4: देखिए ना प्रभु, मैंने तो बस यही कहा कि पुत्री कुछ देर के लिए तुम ऋषि मुनि के साथ जाकर बैठो, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। अब आप ही बताइए स्वामी, कुछ अनुचित कहा मैंने?
5: अशोक सुंदरी मेरी पुत्री, आओ इधर बैठो मेरे निकट।
3: जी पिताश्री।
5: पुत्री, माता ने कुछ अनुचित नहीं कहा, क्या तुम अज्ञानी बनकर जीवन जीना चाहती हो?
3: नहीं पिताश्री, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस...
5: पुत्री, तुम्हें शिक्षा और ज्ञान का महत्व समझना आवश्यक है।
4: आप ही समझाइए इसे।
3: शिक्षा क्या है पिताश्री?
5: शिक्षा यानी सीखने की क्रिया। पुत्री, शिक्षा ही है जो जीवन में उचित और अनुचित में भेद करना सिखाती है। हर मनुष्य, हर जीव के भीतर अज्ञानता को मार कर स्वयं से मिलवाती है शिक्षा। देखो पुत्री, वैसे तो सीखने की कोई आयु नहीं होती, किंतु जो ज्ञान तुम इस आयु में प्राप्त करोगी वो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिक्षा और ज्ञान तुम्हें संसार को बदल देने की क्षमता देता है।
4: तो कुछ समझ आया अशोक सुंदरी?
3: हाँ माता, मुझे क्षमा करना, किंतु पिताश्री एक प्रश्न और है।
5: हाँ पुत्री, कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा?
3: क्या ऋषि मुनि ही मुझे शिक्षा और ज्ञान दे सकते हैं?
5: नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। शिक्षा और ज्ञान तो संसार में हर जगह उपलब्ध है, जहाँ से भी ज्ञान मिल सके ले लेना चाहिए। किंतु पुत्री, ये भी सत्य है कि उस ज्ञान को समझने और उसे उपयोग में लाने की क्षमता गुरु ही दे सकता है। विद्या प्राप्त करने के लिए तो तुम्हें विद्यालय जाना ही होगा।
3: ठीक है पिताश्री, समझ गई। माँ देखा, पिताश्री की बातें मैं कैसे झट से समझ जाती हूँ, ऐसे समझाना चाहिए था ना।
4: पुत्री बहुत नटखट हो गई हो।
5: सदैव प्रसन्न रहो पुत्री।
1: महादेव ने इस कहानी से ज्ञान और शिक्षा के बीच का महत्व और फर्क समझाया है।
0: क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा थोड़ी हुए है। उस वक्त कहाँ पढ़ाई होती थी, कहाँ किताबें होती थी, कहानी मनगणत तो नहीं है कहीं?
1: बात बस पढ़ाई लिखाई की नहीं है, बात है ज्ञान और अज्ञान की। पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा, ये सब जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों जैसा बनो। क्या वजह होगी ये कहने की? पढ़ा लिखा इंसान दुनिया बदलने की ताकत रखता है, अपनी खुद की जिंदगी बदलने की ताकत।

0: बिल्कुल, और हम भी तो बदलना चाहते हैं ये दुनिया।
1: अरे क्या कर लोगी पढ़कर?
0: पापा, हम पढ़ लिख कर दूसरी लड़कियों और लोगों को प्रेरणा देंगे।
1: अरे लोग थूकेंगे हम पर, कहेंगे हम अपनी जड़ों से दूर हो गए।
0: यही सोच तो बदलनी है पापा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा।
2: और अगर कोई कहेगा भी तो आप उन्हें भी ये बात समझा दीजिएगा कि जिंदगी कैसे जीनी है उसका रास्ता पढ़ाई लिखाई और जीवन ज्ञान में ही है।
1: हाँ वो तो
2: देखिए सर, ज्ञान तो बड़े बुजुर्ग सब दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा की प्राप्ति के लिए उसे स्कूल कॉलेज विद्यालय जाना पड़ता है। जब भगवान शिव अपनी बेटी को पढ़ाने पर इतना जोर दे रहे थे तो फिर आप क्यों नहीं?
1: ले भाया, अब भगवान ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ना।
0: मतलब आप मान गए?
1: हाँ बेटा।
2: अरे वाह, हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
0: हर हर महादेव।
2: चलिए अब मैं चलता हूँ, आगे भी जाना है।
1: अब किसे ज्ञान बांटने जा रहे हो? यही काम है तुम्हारा लगता है?
2: ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। वैसे ज्ञान बांटना सिर्फ मेरा काम नहीं, ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाता है।
0: आपसे ऐसे मिलेंगे ये सोचा नहीं था, उम्मीद है आपसे फिर से मुलाकात होगी।
2: हाँ हाँ बिल्कुल होगी। आप लोग अमरनाथ आएंगे मुझसे मिलने?
0: अमरनाथ?
1: अरे क्यों नहीं, हम सब परिवार आएंगे शिवजी से मिलने, और तुमसे टकरा गए तो भाई वाह वाह।
2: चलिए तो फिर वहीं मिलते हैं। हर हर महादेव।
1: हर हर महादेव।
3: शिव बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किसी के तो सुन, क्यों बोलते हैं ये सब? देश की बेटियां पढ़ेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान में 48% महिला हैं। अपनी बहनें, माएं, बेटियां, बिड़ू अगर वो लोग नहीं पढ़ेंगे तो आधा देश गंवार। सिंपल है बाबा सिंपल, कोई समझता क्यों नहीं? मेरे नहीं समझ में आया। बिड़ो अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नहीं, बच्चे को पढ़ाने का, बेटियों को पढ़ाने का, बेटों को पढ़ाने का, क्योंकि शिव ज्ञान का भंडार है। शिव शिक्षा का महत्व सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87 894 18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27।

0: गोपालगंज
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी

फैसिलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिलाधिकारी ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। स्मैक और सुलेशन के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज ने की जनता से अपील। पंखे से लटका मिला एक महिला का शव और लगभग 5,000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने केंद्रों में उपस्थिति पंजी और वास्तविक रूप से उपस्थित बच्चों की संख्या का मिलान किया। उपस्थिति पंजी में दर्ज बच्चों की संख्या की तुलना में केंद्र पर भौतिक रूप से बच्चों की उपस्थिति कम पाई गई। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अभिलेखों में दर्ज उपस्थिति एवं केंद्र पर वास्तविक उपस्थिति में किसी भी प्रकार का अंतर स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति होने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों को आधुनिक और तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण एवं प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार ने आज सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेमरा थामे तथा आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 2 सेमरा पंचायत थामे का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मेनू के अनुसार उपलब्ध कराई जाने वाली भोज्य सामग्रियों की भी जांच की गई। जांच में मसाला सामग्री में गड़बड़ी पाए जाने पर वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता, मात्रा एवं निर्धारित मेनू का 100% अनुपालन सुनिश्चित करें। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा। माधोपुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान माधोपुर बाजार स्थित अंकित जनरल स्टोर में कथित रूप से स्मैक और गांजा जैसे मादक पदार्थों का अवैध क्रय विक्रय करते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पुलिस बल के साथ वहां छापेमारी की गई, जिसे देखकर दुकान में मौजूद व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम अभिषेक कुमार और अंकित कुमार बताया। ये दोनों माधोपुर के ही धुरेंद्र प्रसाद के पुत्र है। तलाशी के दौरान इनके दुकान के पीछे एक माचिस के डिब्बे से मटमैले रंग के कागज में लिपटी 11 छोटी छोटी पुड़िया बैग बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर 4.67 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पाया गया। दुकान की तलाशी में दुकान के अंदर से कैप्शन कोको रैपर 2048 पीस और मैजिक फिक्स सुलेशन 700 पीस भी बरामद हुए। बरामद सामग्रियों को विधिवत जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर इन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि रूबेश कुमार उर्फ झुनझुन सिंह पिता बागेश्वर सिंह साकिन कपारीपुर थाना नबीगंज जिला सिवान फोन के माध्यम से सामान मंगवाता है तथा उक्त सामान उपलब्ध कराता है जिसे दोनों भाई दुकान में बेचते हैं। अब इस पूरे नेटवर्क को भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अधिक से अधिक वादों को सुलझाने के लिए जिला जज के नेतृत्व में तमाम न्यायिक पदाधिकारी गण और संबंधित कर्मचारी गण इसमें काम कर रहे हैं। साथ ही जनता से भी अपील की जा रही है कि आप लोग अपने अधिक से अधिक वादों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करवाएं। इसको लेकर आज जिला जज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
4: 12 सितंबर को इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है गोपालगंज के कैंपस में। इस लोक अदालत में हम लोगों ने कुल 28 पीठों के गठन का प्रस्ताव रखा है। जनता की वादकारियों की सुविधा को देखते हुए न्यायालय के जो मामले हैं उन पीठों का गठन उसी संबंधित न्यायालय के ही कोर्ट में किया जाएगा तथा अन्य जो मामले हैं उनके लिए जो पीठ बनाई जाएगी वो हमारे पार्किंग एरिया में बनाई जाएगी तथा हमारे दूसरे कैंपस के बरामदे में बनाया जाएगा तथा उनका साइनेज भी लगाया जाएगा। जगह जगह आपको बैनर और पंपलेट लगे मिलेंगे जिससे जनता को सुविधा हो सके कि कौन सी पीठ कहां पर लगी हुई है। इसके अलावा हमारे दो हेल्प डेस्क यानी सहायता केंद्र भी मुख्य द्वार पर जहां से वादकारी प्रवेश करते हैं वहां पर बने होंगे जिससे उनको जो लोग ना समझ पाए ना पढ़ पाए कि हम कहां पर जाएं वो उनसे सहायता ले सकते हैं कि उनको किस पीठ में जाना है और अपना मामला कैसे सुलझाना है।
5: कितने पीठों का गठन किया गया है?
4: इसमें कुल मिला के 28 पीठों के गठन का प्रस्ताव है। अभी फाइनल हो सकता है लोक अदालत के दिन तक एक कोई संख्या घट या बढ़ सकती है आवश्यकता अनुसार।
5: किस तरह की वादों की सुनवाई की जाएगी?
4: देखिए इन लोक अदालत में जो न्यायालय में शमनीय वाद है जो कंपाउंडेबल केसेस जिनको हम कहते हैं जिन मामले में सुलह समझौते के आधार पे मामले का निस्तारण किया जा सकता है उन सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा जो न्यायालय में चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें बैंक से बिजली से संबंधित बाट माप के चालान हो गए वाहन के चालान हो गए फैमिली कोर्ट के मामले हो गए महिला हेल्पलाइन में जो शिकायतें आती हैं उनके मामले हो गए ग्राम कचहरी में जो मामले होते हैं उनके मामले हैं टेलीफोन बिल से संबंधित है इन सभी मामलों का निस्तारण भी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से आमजनों से ये कहना चाहूंगी कि हमने जो हमारे ये बैंकिंग या जो कोर्ट केसेस से हट के जो मामले हैं उनमें हमने टोटल 20,000 नोटिस निर्गत करवाई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि हम 1500 केसेस तो कम से कम सॉल्व करेंगे उनका समाधान निकालेंगे और कोर्ट केसेस के मामले में हमने 4200 नोटिस निर्गत किया है और हमारा ये टारगेट है कि कम से कम हम 1000 मामलों को सुलझा करके समाप्त कर सके। तो इसलिए मैं आमजन से ये कहना चाहूंगी कि हमने आपके लिए प्रयास किया है आपके खुशहाल समाधान के लिए प्रयास किया है और लेकिन ये प्रयास सफल तभी होगा जब वो खुद अपना प्रयास करेंगे और लोक अदालत तक आएंगे अपनी बात को रखेंगे और मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे।
3: गोपालगंज शहर के अधिवक्ता नगर वार्ड नंबर 14 में एक महिला का शव उसके कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतिका के शव को कब्जे में लिया। मृत महिला की पहचान चांदनी कुमारी के रूप में हुई है जो उदय सिंह की पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच कर रही है। FSL की टीम भी घटना स्थल पर पहुँच कर आवश्यक अनुसंधान करने के बाद साक्ष्य एकत्रित की है। यह हत्या है या आत्महत्या इन दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। घटना के बाद से मृत महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग कुल 51 मामलों में पकड़े गए लगभग 5000 लीटर से अधिक शराब को आज बलथरी चेक पोस्ट पर नष्ट किया। बताया जा रहा है कि देशी और विदेशी शराब के इस बड़ी कंसाइनमेंट को JCB से कुचलकर जमीन में दफन किया गया। इस दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी भी तैनात रहे। न्यायालय के निर्देश पर इन सभी शराब की बोतलों को कुचलकर दफन कर दिया गया।

0: पंजीयों और अभिलेखों की जांच करते हुए योजनाओं तथा लंबित मामलों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज परिमार्जन एवं अन्य भूमि संबंधित मामलों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अमीन और राजस्व कर्मचारियों को आम जन के कार्यों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। आरटीपीएस के माध्यम से भी प्राप्त आवेदनों की जांच कर नियमानुसार ससमय सेवाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में शहर के एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता हैदर अली ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को नालसा जागृति स्कीम 2025 के अंतर्गत न्याय साक्षरता जनजीवन और जगत के लिए के तहत मौलिक अधिकार, महिला सुरक्षा, बच्चों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित तमाम बिंदुओं पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए। इसके बाद पुलिस लाइन में पहुंचे और वहां लाइन डे पर पुलिस वालों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना और उसके समाधान के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अमित शर्मा, पिता अशोक शर्मा, साकिन करनपुरा, थाना माझागढ़ का निवासी है। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिलाधिकारी ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। स्मैक और सुलेशन के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डिस्ट्रिक्ट जज ने की जनता से अपील। पंखे से लटका मिला एक महिला का शव और लगभग 5,000 लीटर शराब को किया गया नष्ट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434668 पे।
5: अब बेटा, बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9797076575।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
4: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: एक कुत्ते, इडियट, हाँ तेरी तो

मालिका।

0: एक बादशाह की सल्तनत के लिए ये बहुत बुरी बात है कि उसके लोग बटे हों, एक दूसरे के खिलाफ हों। हमारी सल्तनत में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं। ये सब लोग सिर्फ अलग अलग सोच नहीं रखते, अगर कभी कभी एक दूसरे के साथ दुश्मनी से पेश भी आते हैं, हमें इन सबको एक करना होगा, एक। लेकिन इस तरीके से कि ये सब एक भी हो और सब भी। हर मजहब में अच्छाई होती है, हर मजहब। हमें उस अच्छाई को बढ़ावा देना है, इसी में खुदा की इज्जत है और सल्तनत इसी से बची रहेगी और लोगों में अमन होगा। आप जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसकी राय दें, और जब तक वो होता नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा।
1: अकबर की
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका। और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
3: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
2: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
3: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
2: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सिमेटली 7.8% है।
2: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।

0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमरीका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमरीकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
6: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में

0: आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मॉनसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगर राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आतंक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारे, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries.
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
13: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9106264498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कोलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
7: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जलस्तर में आ रही है कमी, अब भी लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कृषि विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों से फसल क्षति का मांगा विवरण, आकलन के बाद किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति अनुदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निर्विवाद रूप से यूपीआई का है महत्वपूर्ण योगदान। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, सोन समेत अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है। हालांकि अब भी 14 जिलों के 82 प्रखंडों के 491 पंचायतों में लगभग 36 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद नदी में भारी उफान बना हुआ है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 171 मीटर ऊपर दर्ज किया गया है। पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 295 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इधर गंगा का जलस्तर मुंगेर और भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है। सारण जिले के दरियापुर में मही नदी का तटबंध टूट जाने से आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भागलपुर जिले के नवगछिया के ब्रह्मोत्तर तटबंध पर पानी के रिसाव के कारण एक दर्जन गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 456 सामुदायिक रसोई घर का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही राहत शिविरों में बच्चों को दूध और महिलाओं को सैनिटरी किट का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावितों के बीच पॉलिथीन शीट भी बांटी गई है। बाढ़ से बचाव के लिए एसडीआरएफ की 27 और एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात की गई हैं। राज्य में गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन समेत अन्य नदियों की बाढ़ से लगभग 1 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल ने बताया कि जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग का यह प्रारंभिक आकलन है। निदेशक ने कहा कि जिलों से फसल क्षति की रिपोर्ट मांगी गई है। श्री लाल ने बताया कि पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया और अरवल के 77 प्रखंडों में बाढ़ से फसल की क्षति हुई है। पटना, वैशाली और भागलपुर के दियारा इलाके में मक्का, सब्जी और केला की खेती को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पटना, भागलपुर, वैशाली और खगड़िया जिले में धान, मक्का और सब्जी के साथ ही उद्यानिक फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ पटना जिले में पुनपुन नदी की बाढ़ से 10,101 एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि निदेशक ने बताया कि पानी उतरने के बाद अंतिम रूप से वास्तविक क्षति का आकलन कराया जाएगा और जिलों की रिपोर्ट की जाँच के बाद किसानों को अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सड़कों की स्थिति की जानकारी ले रहा है। विभाग के अनुसार जिलों के अभियंताओं को पानी उतरते ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का निर्देश दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार बाढ़ के कारण ग्रामीण सड़कों को बड़ी क्षति हुई है। सिर्फ 14 जिलों में 600 से अधिक सड़कें पानी में डूब गई हैं। इनमें पटना, वैशाली, सारण, भागलपुर, भोजपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, अरवल और अररिया शामिल हैं। पटना जिले की 90 सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा है, जिनमें 44 दानापुर की हैं। वैशाली में सबसे अधिक महनार प्रखंड की 80 सड़कों पर बाढ़ का पानी है। सारण के 78 सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिनमें सोनपुर की 47 हैं। वहीं भागलपुर की 62 सड़कों पर पानी जमा है। ग्रामीण कार्य विभाग हर दिन सड़कों की स्थिति की जानकारी जिलों से ले रहा है। जिलों के अभियंताओं को पानी उतरते ही क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का निर्देश दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार।
0: पटना गया रेलखंड पर आज से रेलगाड़ियों का परिचालन सामान्य हो जाने की संभावना है। इस रेलखंड पर रेल पुल संख्या 21 के पास सोन नदी का जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। इसके मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने आज से परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि बाढ़ के कारण पिछले 4 दिनों से रेलखंड के एक लाइन पर रेलगाड़ियों का परिचालन बाधित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह इतना बड़ा परिवर्तन है कि फिनटेक की चर्चा यूपीआई के बिना अधूरी रहेगी।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
2: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने राज्य में 25 नई चीनी मिलों के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कल गन्ना उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पूरे वर्ष और जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर मिशन मोड में कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करना और नई चीनी मिलों की स्थापना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री ने जिला स्तर पर सहायक निदेशक सहित संबंधित अधिकारियों और चीनी मिल प्रबंधन के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा आपसी समन्वय से गन्ना क्षेत्र के विस्तार और गन्ना उद्योग को मजबूत करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान समय पर हो रहा है, इससे सभी का विश्वास बढ़ा है, लोगों के इस भरोसे को बनाए रखना है। श्री चौधरी ने कहा कि आवेदनों के निष्पादन में सभी अधिकारी और कर्मी अपना सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री सचिवालय में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए 137 लोगों की समस्याएं सुनी और ऑन द स्पॉट निराकरण कराया। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट तथा संविदा पर कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों के मानदेय में वृद्धि की है। अब प्राध्यापक को 2,07,000, सह प्राध्यापक को 1,55,000, सहायक प्राध्यापक को 1,25,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही सीनियर रेजिडेंट को 1,15,000 और जूनियर रेजिडेंट को 75,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ये बढ़ोतरी 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के 168 टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। पटना के नेक संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी करेंगे। इंटर मैट्रिक के प्रथम टॉपर को 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाले को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके साथ ही इंटर के चौथे पांचवें टॉपर को 30-30 हजार और मैट्रिक के चौथे से दसवें स्थान तक के छात्रों को 20-20 हजार रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सभी पुरस्कृत छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त 51 हजार रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम में टॉपर छात्रों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि इसके लिए बड़ी व्यवसायिक कंपनियों की मदद ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था से 12वीं पास विद्यार्थियों के सामने 2 रास्ते होंगे। ये सुविधा वैसे छात्रों के लिए होगी जो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते या 12वीं के बाद ही करियर बनाना चाहते हैं। राज्य के सभी स्कूलों में 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता की पाठशाला चलाई जा रही है। इसमें स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। पखवाड़े के दौरान प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ, वीडियो और फिल्में अनिवार्य रूप से विभाग के ईमेल पर भेजना है। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान और गोपालगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है।
1: दिनांक 9 सितंबर को राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में सबसे अधिक 62.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गया के प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने रानी कमलापति और जबलपुर से गया के बीच पितृपक्ष विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। दोनों रेलगाड़ियां 3-3 फेरे लगाएंगी। इससे मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों समेत मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न शहरों से गया आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अब खबरें खेल जगत से। बिहार T20 क्रिकेट लीग का फाइनल मुकाबला आज पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान करेंगे। विश्व ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चयनित गोपालगंज की रिया सिंह और भवानी सिंह को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने 2-2 लाख रुपए का चेक इन खिलाड़ियों को प्रदान किया। 20 नवंबर से चेन्नई में खेली जाने वाली एशियन कैडेट कप तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए प्रदेश के 8 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। यह जानकारी बिहार तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष सुष्मिता रतन ने दी है। 12 सितंबर से पटना में 11वीं राज्य स्तरीय पिकल बॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के बीडीओ के घर पर ईओयू के छापेमारी पर लिखा है, बीडीओ के पास 16 भूखंड, 70 लाख के घर और 4 महंगी गाड़ियां मिली हैं। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, जीविका दीदियों ने बनाई 90 लाख बच्चों की ड्रेस, 126 करोड़ रुपए तक का टर्न ओवर पहुंचा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बाढ़ में डूबे 5000 स्कूल, 15 से परीक्षा, बच्चे घर से लाएंगे दरी चटाई। प्रभात खबर ने उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गोद लिए गए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति से नहीं किया जा सकता वंचित। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, सोन और अन्य सहायक नदियों के जलस्तर में आ रही है कमी, अब भी लगभग 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। कृषि विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों से फसल क्षति का मांगा विवरण, आकलन के बाद किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति अनुदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में निर्विवाद रूप से UPI का है महत्वपूर्ण योगदान। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्ते मैम।
10: नमस्ते।
11: हेलो
10: जी
11: जी बोलिए।
10: नाम बता दीजिए अपना।

0: जी, मेरा नाम नंदिनी कुमारी है।
1: कहाँ से बोल रही है नंदिनी जी?
0: गोपालगंज।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: अजयपुर से।
1: अच्छा जी, तो क्या कर रही थी अभी?
0: अभी तो हम बैठे हुए थे, अपना बताइए हम क्या कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर रही होंगी?
1: जी जी, लोग से बातें हो रही हैं।
0: तो ठीक है, आप ठीक है?
1: जी मैं भी बढ़िया।
0: मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
0: ये गाना नहीं, ये ढाई अक्षर प्रेम का दो लफ्जों में लिखी मैंने।
1: जी जी, अपनी प्रेम कहानी।
0: जी जी,
1: ये गाना किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हूँ।
0: जी जी जी, मैं अपने हस्बैंड को और हमारी भतीजी लोग है।
1: अच्छा नंदिनी जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी जी
1: जी, थैंक यू मैम। वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: मैम। नमस्ते जी। बढ़िया है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा
1: है? कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। कहाँ से? गोपालगंज में। कहाँ?
1: मतलब मेरा घर जो है ना, वो नवादा है।
0: तो क्या हो रहा था भाई?
1: हम दोनों यही के बैठे थे, बात कर रहे थे आपस में।
0: जी, तो खाना वाना हो गया आपका?
1: हाँ, खाना ना खा ली।
0: तो फिर क्या है आज की फरमाइश आपकी?
1: फरमाइश है हमारी, बुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे।
0: और ये गाना
1: सुनना है?
0: ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: आपको, भारती मैम को, और मेरे दीदी तृप्ति मैम का, और दोनों का रहेंगे भी, और
0: ओके। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
13: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो जी,
11: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
14: चलिए गाना सुने तो नादी गाना।
11: जी हम गाना सुना हम लोग नाम बता दिया अपन।
14: नाम बोला शंभु यादव घर बिहार में पश्चिमी चंपारण करवा माने हिमाचल प्रदेश में सोलन में।
11: अच्छा
14: युवा पेंट के कार करी ने ये मेरा काम जारी FM भी चल दिया।
11: तो कैसे सुने मोबाइल ऐप से की रेडियो के माध्यम से?
14: मोबाइल ऐप से सुने मोबाइल में दिन भर गाना चलेगा यही सुबह रेडियो उसमें सवेरे से शाम करे 9 बजे चालू करेंगे शाम को 5 बजे चलेगा।
11: अच्छा
14: जब लोग दिखती रहेगा तब लोग चलेगा गाना और प्रोग्राम चलेगा।
11: चलिए बढ़िया बाबा इसे कितना दिन से सुना करेंगे वो?
14: तो 2-3 साल से रिंगिंग चलाई ने।
11: अच्छा
14: पहले भी लोग से बात भई बात को तो बहुत खुशी बा मन में ये अगर बात हो गई आए पहले ही फोन लगाने ला गई अभी तो कई दिन ट्राई करे नहीं लगे ना करे
11: ना तो ये बतावल जला कि रिकॉर्डिंग होला सोमवार बुधवार और शुक्रवार के तबे कॉल करें तो और कॉल लाग सकता।
14: गाना बा जान फिल्म के गाना बा छोटी सी उम्र में बड़ा दर्द दिया रे जिसे का इलाज नहीं कोई रब्बा मुझे याद कर दिया।
11: ठीक बा और गाना क्योंकि सुनाए की बिचारा था नहीं
14: गाना सुनाओ बाले इज्जत करना लो बाल कन्हैया बड़े अनिल यादव बड़े और जे भी श्रोता गण सुनता सुने
11: जी जी
14: जी
11: तो फिर चलेगा और गाना प्ले करता नहीं
14: भाई कब चली गाना
11: शाम के 5 से 7 के बीच
14: 5 से 7 के बीच में
11: जी जी
14: ठीक बहुत बढ़िया
11: जी तो प्ले करता नहीं सुनाते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
14: थैंक यू मैडम जी
11: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते।
0: कैसी हैं मैडम जी?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा।
1: क्या हो रहा है?
0: आपका इंतजार हो रहा है, फोन लगा रहे हैं अभी लगे।
1: अच्छा जी, चलिए, बहुत मुश्किल होता है कॉल करने में, है ना?
0: जी बहुत मुश्किल होता है, इतना दिन पर तक फोन लगाया है।
1: अच्छा, वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: भोरे से मैं हूँ।
1: कहाँ से?
0: भोरे से मैं हूँ, भोरे।
1: अच्छा अच्छा, और आपका नाम?
0: नेहा।
1: नेहा जी। अच्छा नेहा जी, तो खाना वाना
0: पसंद है? अच्छा पसंद है।
1: जी जी भाई, तो बोल रहे हैं बहुत काफी दिन बाद कॉल की है आप।
0: बहुत काफी दिन बाद फोन नहीं लगते, इसलिए पूछताछ हैं, पता नहीं लग रहा तो क्या देखते।
1: अच्छा, वो क्या है ना, लिखना सारे ज्यादा हो गया तो फिर कॉल लेने में दिक्कत हो रहा है। तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
0: फरमाइश राज फिल्म का गाना।
1: कौन सा?
0: कोई गाना।
1: राज फिल्म का कोई भी गाना?
0: जी।
1: ओके, और ये सुनवाना भी चाहती है किसी को?
0: सुनवाना जी, आप मनोरमा मैडम बोल रहे थे?
1: जी जी।
0: सोनिया मैडम का रिटायर हो गया क्या?
1: नहीं, मुझे तो नहीं पता।
0: नहीं पता? नहीं, मैंने प्रोग्राम नहीं आते है ऐसे ही बोलते।
1: जी
0: आप लोग रहते हैं, ठीक है, कोई चलाए अच्छा है, हम लोग तो स्टार्ट पे के बराबर है।
1: जी
0: तरह हम लोग के लिए के बराबर है, कोई चलाए अच्छा है।
1: जी जी, तो फिर नया जी प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैडम जी, आप
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैडम जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजैट पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: हाँ अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: और मैडम जी, क्या हाल है?
9: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
10: अभी बढ़िया है, नाश्ता पानी हो गया?
9: और आपका?
10: हमारा भी हो गया, नाश्ता पानी करके बस काम पर बैठे हैं।
9: वैसे किस चीज का दुकान है?
10: सिलाई का है।
9: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। वैसे का नाम नहीं बता?
10: रहमत अंसारी, जलालपुर के बगल में। उधर का मौसम कैसा है? अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
9: तो इसका मौसम मौसम यानी बिहार का मौसम मैं आपको बता दूं तो बहुत सुहाना बना हुआ है।
10: चलिए अभी तो मैं कश्मीर में हूँ।
9: तो कश्मीर में अभी वहाँ पे ठंड पड़ रही है कि?
10: हाँ यहाँ पे मैडम ठंड अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसे तो यहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है हमेशा, मगर
9: नवम्बर तक ज्यादा बढ़ जाता है।
10: हाँ नवम्बर तक तो सभी लोग अपने यहाँ से चले जाते हैं घर से, इसलिए की यहाँ पे ठंडी अपने यहाँ के लोगों से बहुत कम बर्दाश्त होता है।
9: चलिए अभी उतना तो ठंडी नहीं पड़ रही होगी।
10: हाँ अभी ठंडी नहीं, फिर भी रात को तो एक कंबल ओढ़ के सोना ही पड़ता है।
9: अच्छा।
10: एक कंबल तो हमेशा ओढ़ के सोना पड़ता है। दिन में थोड़ा सा धूप होगा तो गर्मी महसूस होगा, वो भी पसीना नहीं निकलता है बहुत कम, नहीं तो बाकी तो एक कंबल का तो ठंडा हमेशा रहता ही है।
9: जी जी।
10: हमको एक गाना सुनना था।
9: बता दीजिए।
10: ये खलनायक फिल्म का गाना है, पालकी में होके सवार शरीर है तो अपने शाजन के द्वार शरीर है।
9: जी। और ये गाना सुनवाना भी चाहते हैं किसी को?
10: गाना सबसे पहले आपको और तमाम जितने रेडियो इंजिन सुनने वाले हमारे श्रोता है, जो इंजिन के पूरे सदस्य परिवार है, सबको सुनवाना चाहता हूँ।
9: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजिन 90.4 FM।

0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
0: जी सर, मास्टर धना से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: ठीक है, अपना सुनाइए मैडम।
1: जी मेरा भी बढ़िया है।
0: आप लोग ठीक से रह रहे हैं?
1: जी जी।
0: मौसम आपके तरफ कैसा रह रहा है?
1: मौसम तो ठीक है, सुहाना हुआ है।
0: सुहाना, धूप तो इधर निकला हुआ है हम लोग की तरफ बहुत ज्यादा, रोहतास जिला में।
1: अच्छा, कहीं धूप तो कहीं छा।
0: हाँ तो ये है, प्रोग्राम एयरबस चलेगा? एयरबस
1: देखिए क्या होता है, क्या है ना कि मतलब ये भी तो 5 बजे जो शो चलता है उसको भी तो देखना पड़ता है।
0: अभी तो 5 बजे से रिकॉर्डिंग जो है सब फिर से करना पड़ता होगा ना, सेटिंग करना पड़ता होता होगा।
1: जी चलिए देखा जाएगा।
0: हाँ हाँ, अच्छा लगता है प्रोग्राम हम लोग का, ये ज्यादा करके फरमाइश हम लोग ज्यादा करके सुनते हैं। कल तो सुन रहे थे 7:45 बजे, कहना होगा व्हाट्सएप को जरिए चाहे फोन के जरिए।
1: जी जी, चलिए तो फिर आज की फरमाइश क्या है?
0: आज की फरमाइश सुरवीर मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा।

0: और सुनने वाले हमारा बेटा है छोटा से जीशान, और सबसे पहले आप लोग और जितने रेडियो रंजीम है सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैडम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजीम 90.4 FM।
0: जी

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick your phone up. Hello. जब फोन टिंग पे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
14: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो,
16: नमस्कार
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: आपका भी स्वागत है मनोरमा जी, का हाल चाल है?
15: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
16: हम भी बढ़िया है। और गोपालगंज का मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रहा है कि नहीं?
15: गोपालगंज का मौसम सुहाना बना हुआ है, बारिश तो नहीं हो रही है।
16: तो बारिश का है नहीं करवा रहे हैं आप लोग, बताइए।
15: हाँ, बारिश हो, कभी कभी हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन आज तो नहीं हुआ।
16: आज नहीं हुआ? बदरी छाया हुआ है या धूप निकला हुआ है?
15: नहीं नहीं नहीं, धूप निकला है, नहीं बदरी छाया हुआ है, कभी कभी हल्का हल्का
16: बॉडी में। आपको लगता है कि हमारा आपका पहली बार बात हो रहा है सर?
15: जी, वैसे आपका नाम?
16: आवाज से पहचान।
15: आप ही बता
16: दीजिए, बाकी तो हम बता ही बोला।
15: दिलीप जी बोल रहे हैं
16: जी, परफेक्ट।
15: देखिए आवाज से पहचान है ना?
16: वही तो बोला कि आवाज से गेस्ट कीजिए, हो सकता है कि नाम आपको ख्याल आ जाए।
15: जी जी, आवाज से जाना पहचाना ही लग रहा था
16: जी। कल जो वो कॉन्टेस्ट जो खुला रही थी ना, तो उसमें जो क्या हुआ कि आपका आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा
15: था,
16: बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आपने सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें जनसंख्या कम है।
15: कल का, कल तो मैं ये शो नहीं चलाई थी,
16: कॉन्टेस्ट वाला नहीं।
15: अच्छा जी, हाँ हाँ,
16: उसमें आप गाते भी गाएंगे।
15: जी जी,
16: उसके बाद जो भोजपुरिया एक्सप्रेस में 2-3 गाने चला के आप चली गई, उसके बाद आई ही नहीं आपने।
15: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से नहीं चला।
16: इसलिए सोचा कि आप चलो, क्या कहा जाए, मान लीजिए कि दुविधा है, वो आते तो भारती जी तो प्रोग्राम चलती।
15: जी जी।
16: और आप इधर कॉन्टेस्ट वाला भी काम किए है, इधर थोड़ा आया, आपको हैरानी ज्यादा हो गया था। हम लोग जो है बहुत पुराना लिसनर है, कितने आरजे लोग आए, कितने आरजे गए, हम लोग यहाँ पे है वहीं से स्थापित है। लेकिन यही कहेंगे कि अभी मन लगा के काम कीजिए, अभी ऊंचे मकाम तक जरूर आप व्यतीत कीजिएगा। लेकिन आपका आवाज जो है ना रानी मुखर्जी से मैच करता है जी, इसीलिए आपका आवाज जो है ना सब कोई कहता है कि क्यों मनोरमा जी नहीं रिकॉर्डिंग कर रही है क्या, मनोरमा जी कहाँ है, उनसे बात करना था, इसलिए कि मैं सुनता हूँ ना। रानी मुखर्जी का आवाज की तरह आपकी आवाज है।
15: अच्छा जी,
16: तो कोई बात नहीं, और भी लाइन में लगे होंगे।
15: जी जी,
16: तो आज का प्रोग्राम है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। सबसे पहले आपको और भारती जी हैं, समीना जी, वहीता जी, गुर्जा जी, निशा जी, मनीषा जी, संजू जी, सोनू भाई, गाटा भाई, सन्यासी भाई, संगीर अंसारी जी हैं, कमरान भाई हैं, अफसर भाई हैं, सुरुचि जी हैं, उसके बाद जो सोनी शर्मा जी हैं, और जितने तमाम श्रोतागण जो रेडियो सुनेंगे इन दिन, उन सभी को एक गाना डेडिकेट है, मैं दिलीप राम दिल्ली से।
15: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
16: नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।
15: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते।
0: थैंक यू
1: जी।
0: हेलो
1: जी, आप गणेश जी बोल रहे हैं ना?
0: जी
1: जी। तो कैसे हैं आप?
0: मैं तो एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे क्या हो रहा है?
0: क्या हो रहा है? अभी तो आए सिवान घूमने के लिए, तो फोन लगा रहे हैं आपके पास। कल मेरे गाना नहीं बजता है,
1: क्या करे? 2 मिनट के बाद हम वहाँ से शो बंद करके चले गए।

0: करिश्मा जी को जितना सुन रहे हैं सब लोग रेडियो पे मजा।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो टिमटिम 90.4 FM।
0: नमस्ते
1: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।

0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: सोहनाज बेगम बोल रही हूँ गोपाल में।
6: कहाँ से?
7: गोपाल में।
6: और आपका नाम?
7: सोहनाज बेगम।
6: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है
7: जी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
6: अच्छा जी जी, सब बढ़िया। आप कैसी हैं?
7: मैं अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। मैं आपसे बात करके बहुत खुश रहती हूँ
6: जी।
7: जी जब बात करते हैं तो मेरा चेहरा से बहुत मुझ से बात रहता है। चलो हम लोग दीदी में बात किया था, कितना अच्छा, कितना सही सलाम से हम दोनों में बात हुई थी, बहुत अच्छा। इधर भी नहीं आइएगा क्या? गोपालगंज में नहीं आइएगा?
6: जी जरूर आएंगे। गोपालगंज में कहाँ है?
7: जी बंजारी।
6: अच्छा जी
7: जी,
6: जरूर आएंगे। लो
7: सुनना है,
6: बता दीजिए।
7: तुझे ना देखे तो चैन मेरी आता नहीं।
6: ये गाना डेडिकेट हुई है?
7: जी हमारे घर में सब लोग सुनने वाले हैं।
6: अच्छा जी, वैसे क्या हो रहा था अभी?
7: भाई तो तरह से बात कर रहे हैं, गाना के सुनवाई कर रहे हैं।
6: अच्छा, आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
7: हाँ सब लोग दुआ है, सब लोग भी अच्छे हैं, आपके बात सुन रहे हैं लोग।
6: अच्छा
7: जी,
6: चलिए बढ़िया। तो फिर
7: कितने नंबर से लगा है?
6: जी
7: कितने नंबर से लगा है? कितने नंबर से गाना फरमाइश मेरा?
6: आप ये तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आए हुए हैं।
7: अच्छा, बजे सुना सकते गाना?
6: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा, 5 से 7 वो क्या ना, बहुत सारे कॉल्स हो जाते तो अब सबका एक साथ तो नहीं बज सकता।
7: नहीं नहीं, अलग अलग।
6: चलिए जी, आप ठीक है ना?
7: हाँ, ज्यादा दिन हो गया कॉल करने का, उस टाइम तो बंद था, कितना भी ट्राई किए।
6: बहुत काफी दिनों बाद कॉल की है आप।
7: हाँ जी
6: जी, तो आप शो में जुड़ते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है।
7: हाँ हमको भी अच्छा लगता है बात करके।
6: जी ठीक है, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: जी मैम।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ, बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी नमस्कार, बहुत 90.4 FM में।
1: जी मैम कैसे हैं?
0: जी बढ़िया है, अपना बताइए आप कैसे हैं?
1: जी हम भी अच्छे हैं। भारती मैम?
0: नहीं
1: जी, आपका नाम क्या है?
0: जी मेरा नाम मनोरमा।
1: अच्छा, आपका आवाज कुछ अलग है, इसलिए मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं।
0: अच्छा जी, कोई बात।
1: जी हम फसल जल्दी बोल रहे हैं गोपालगंज से।
0: जी
1: जी हमको रेडियो सिग्नल लगा रहे हैं।
0: अच्छा जी,
1: इसी लगाव को देखते हुए एक गाना सुनना है।
0: बता रही है
1: जी, गाना का नाम है जब से हम तेरे आशिक बने।
0: कौन सा?
1: जब से हम तेरे आशिक बने।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: जी हम गाना तो गाते नहीं है, गा ही तो बता रही है।
0: दो लाइन ही गाना है आपको?
1: हमको मैम गाना गाने आता नहीं, लेकिन सुनते हैं बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, फिर गाने के
1: बाद? जी मैम कल आप भोजपुरी एक्सप्रेस पूरा चलाई नहीं?
0: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं चला पाया।
1: ऑटो वाला मेरा फरमाइश बच गया, लेकिन बाकी लोगों का नहीं बचा।
0: चलिए आपका तो बचा कहीं ना हटे वहाँ।
1: आज तो चलेगा भाई का?
0: देखिए क्या होता है।
1: जी चलेगा, तो मेरा एक सप्ताह कम्प्लीट हो गया है, जो तो पहले बजाइएगा लो।
0: जरूर चलेगा।
1: बहुत खेल करते हैं।
0: अच्छा, अच्छी बात है। वैसे फरमाइश क्या बताए थे आप
1: आज की?
0: जी
1: आज से मेरा फरमाइश जैसे हम तेरे आशिक बने।
0: डेडिकेट भी है?
1: डेडिकेट है आपको, सभी आर्य को, भारतीय को, सभी रेडियो दोस्त को। और मैं ये कब चलेगा?
0: ये शाम को चलेगा।
1: जी मैम, एक नंबर में है तो एक नंबर में बजेगा, एक नंबर में है तो एक नंबर में बजेगा।
0: जरूर बजेगा,
1: कोशिश कीजिएगा एक नंबर में बजाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब 2-3 मिनट पहले मेहनत करके बजाए की एक नंबर में लग जाए। जी मेहनत पसंद हुआ, इसके लिए धन्यवाद आपको देते हैं।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18-744।
9: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
14: कैसे हैं आप?
13: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
14: बारसी मैम बोल रही है ना?
13: नहीं, मैं मनोरमा।
14: मनोरमा मैम बोल रही हूँ, पहली बार बात हो रही है आपसे मैम।
13: अच्छा जी,
14: बहुत खुशी हुई आपसे। मैं गया जी से बोल रही हूँ, शंकर प्रसाद गुप्ता जी।
13: जी कैसे हैं आप?
14: बिल्कुल बिल्कुल सही है मैम, आप कैसी हैं?
13: जी हम भी बढ़िया हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
14: गया जी से, जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था।
13: जी
14: जी जी जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, और इसी तरह से हम लोग को गाना एंजॉय करवाते रहिए।
13: जी जी, सब आप लोग के दुआ पे ऐसा हम लोग भी ठीक है लो। पूरा कोशिश है कि आप लोग ये फरमाइश टाइम टू टाइम हम लोग प्ले करते रह लो।
14: मैम हमारे आज बहू का जन्मदिन है।
13: अच्छा,
14: तो वो बहू हमारी मीरगंज की रहने वाली है
13: जी।
14: अभी तो बैंगलोर में है, बस उनके जन्मदिन पर एक अच्छा सॉन्ग सुना दीजिए मैम, हिंदी सॉन्ग।
13: जी बिल्कुल, तो मेरे तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
14: थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम।
13: जी तो जन्मदिन के अवसर पे आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
14: हम तो चाह रहे हैं कि हमारी बहू के लिए एक अच्छा हिंदी सॉन्ग सुनाए, कि वो खुश रहे, हैप्पी रहे, हर समय एंजॉय करते रहे।
13: अच्छा, तो बिल्कुल सुनाएंगे, तो क्या आप बता सकते हैं
14: क्या
13: वही सॉन्ग?
14: सॉन्ग बस आप अपनी तरफ से सुनाइए मैम, बर्थडे का नया सॉन्ग हो, अच्छा सॉन्ग हो, समझे मैम?
13: जी जी।
14: कब तक बज जाएगी मैम
13: ये? आपका शाम को बजेगा, 5 से 7।
14: नहीं नहीं, आप तो बोलते हैं शाम को बज जाएगा, 5 दिन के बाद बजता है।
13: नहीं नहीं, इसमें 5 दिन के बाद नहीं बजता है।
14: हाँ मैम, अगला बार में हम फरमाइश किए थे, तो मतलब मंडे का आया था, सीधे हम फ्राइडे बजे का,
13: तो बीच में चीजें रिकॉर्ड की होंगी तो इसकी वजह से कॉल इधर उधर हो सकते हैं।
14: बस मनोरमा मैम जी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मेरा सॉन्ग बजवा दीजिएगा, क्योंकि हमारी बहू का आज ही बर्थडे है।
13: जी जी, हम आज ही बजवाएंगे।
14: ठीक है, कितना बजे शाम में ना मैम?
13: 5 से 7 के बीच।
14: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम।
13: ओके जी,
14: आप मेरा गाना बजाने के लिए थैंक यू
13: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
14: थैंक यू।
13: रेडियो रिमझिम 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: थैंक यू मैम।
13: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: गाना सुनना है
0: जी? गाना सुनवाएंगे ना, बता दीजिए अपना नाम।
1: कुशवाहा बोल रहे हैं
0: जी।
1: गाना सुनवा दिए आदमी खिलौना का।
0: गाने के बोल,
1: जब जो चाहे वही तो होना है आदमी खिलौना है।
0: ओके, वैसे अपना नाम नहीं बताया पर और बता दी।
1: नाम तो बताए
0: तो ही से आवाज नहीं आई आपकी।
1: कुशवाहा बोल रहे हैं।
0: कहाँ से?
1: श्यामपुर से।
0: अच्छा जी,
1: पैडाला के पास है जी। मनोरमा बोल रही है
0: जी। तो क्या
1: सुनाइए मैम
0: जी? सब बढ़िया है, आप बताइए।
1: चलिए, आपसे बात होता है बहुत अच्छा लगता है
0: जी। मुझे भी आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए मैम, थैंक यू
0: जी। अब जो गाना बताया है वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: सभी रेडियो श्रोता सभी को सुनेंगे मैम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमा जेड पर।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन रिंग पे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
15: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: हाँ बोलिए जी,
17: कैसे हैं आप?
16: हम ठीक हैं जी।
17: नाम बता दीजिए अपना।
16: मेरा नाम मोहम्मद अबू अंसारी है।
17: और कहाँ से?
16: मैं झारखंड से, फिलहाल गुजरात में है जी। दो दिन से लगा रहे थे, मैं भी सोचा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ आज लग गया एक ही बार में।
17: जी, तो क्या आप पहली बार कॉल किए हैं?
16: हाँ, एक बार और लगा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था, लग ही नहीं रहा था।
17: अच्छा, चलिए कोई ना, अभी लग गया ना।
16: हाँ आज लग गया, एक बार उसमें भी लगाया, एक और चैनल है ना, इसमें पता नहीं गाना सुनाया कि नहीं, इसमें भी पता नहीं सुनाएगा कि नहीं।
17: काहे नहीं, जब आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो गाना तो जरूर बजेगा।
16: कब बजता पता भी नहीं चलता ना, उसका 2 घंटा इंतजार किया, आया ही नहीं मेरा नंबर।
17: तो जो अभी आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, ये शाम को बजेगा?
16: आज ही, आज थोड़ी बजेगा। हेलो
17: जी,
16: आज गाना थोड़ी बजेगा?
17: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
16: नहीं, आज मेरा पहला रिकॉर्डिंग कर दीजिए ना, 1-2 नंबर में कम से कम सुनने को तो मिल जाए पहली बार।
17: जी जी, वैसे होता तो अब तक मैं बजा दी होती, और क्या ना बहुत सारे कॉल्स आए हैं तो आगे पीछे हो जाता है, चूज करूंगी।
16: दिल वाले का सॉन्ग सुना दीजिएगा।
17: कौन सा गाने के बोल?
16: कोई जीता था जिसके लिए।
17: क्या गा के बता सकते हैं?
16: तो गाना है ना सर सॉन्ग, जीता था जिसके लिए मरता था
17: जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
16: हाँ, सुनवाना चाहते अपने दोस्त लोग को।
17: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका?
16: हाँ प्ले कर दीजिएगा, मगर सुनवाइएगा कब, यही हमको।
17: आपका गाना शाम 5 से 7 के बीच बज जाएगा। आप अगर आज नहीं बजा तो कल फिर से की बज जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप ऐसे सुने, नहीं तो आज भी बज सकता है आपका कॉल।
16: तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो कितना बजे चालू होता है जिसे सुनने वाला?
17: ये होता है आपका 5 से 7 के बीच।
16: 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा ना?
17: जी जी।
16: आज नहीं तो कल बज जाएगा?
17: जी जी
16: जी सर।
17: ओके, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
0: छुट्टी में है, लगाते लगाते फोन लगा
1: कर रही है। बहुत ज्यादा कॉल आवत रहे तो दिक्कत होगा तो
0: नहीं बोल रही है।
1: ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, फोन तो हम ना उठले रहे अभी।
0: उठा
1: अभी तो अभी कॉल ले कटल जैसे वैसे राहुल फोन आयला।
0: ऐसे मैंने तीसरा या चौथा कॉल रहा के कट गई, आवाज ना आई ना 10 सेकंड भाई को पहले कटे चार ना आवाज।
1: अच्छा अच्छा, सॉरी कहीं हो गए गलती हमसे। इसे नाम बता दिया अपन,
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: तो क्या होते रहा अभी?
0: क्या होते रहा अभी, सूत के उठल बनी इंतजार में बनी। अभी आज छुट्टी के दिन बस अपनी आदमी लेट तक रेस्ट कर लो ना। सच नहीं
1: और सब बढ़िया बा। वैसे क्या करे नहीं लोग?
0: हम वेल्डर भी है, प्रेस मैन भी है।
1: अच्छा जी, नहीं बढ़िया बा। फिर आज की फरमाइश बता दी।
0: हेलो
1: जी, आज की फरमाइश बता दी।
0: आज के फरमाइश ही बा, अमित उपाध्याय के भी रही। जब घर के चक्कर में पेरा जला आदमी तो अब वेद शास्त्र भूला जला आदमी।
1: अच्छा, गा के बता सकते हैं?
0: नहीं, ऐसा तो नया ही बा गाना, ऐसा ही बा। जब घर के चक्कर में पेरा जला आदमी तो अब वेद शास्त्र भूला जला आदमी, ऐसा ही बा। ज्यादा प्रेशर ना दें, मिले तो बजा दें।
1: जी जी, कोशिश करेंगे
0: ज्यादा प्रेशर ना रहे।
1: ना ना, हम कोशिश करें कि गाना राहुल टाइम से प्ले करें। और क्यों के सुनाई के भी चाहते नहीं?
0: कितना हमारे नाम से जाने वाला लोग सब सुन लो, इतना ना हो जाए। चलिए ठीक है, इंतजार करें।
1: जी फिर प्ले कर दें राहुल गाना।
0: कर दें
1: जी। सुनत रहे सबके साथ, बिल्कुल सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: जब घर के चक्कर में जब घर के चक्कर

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो।
9: हेलो मैम, नमस्ते।
8: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
9: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं RMP से।
8: जी जी, क्या हाल चाल है सुनील जी?
9: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम, तो अभी तो फोन लगे तो इंतजार खत्म हुआ मैम।
8: जी जी। तो नाश्ता हो गया आपका?
9: जी जी, चाय नाश्ता तो हो गया मैम, अभी तो खाने का तैयारी है मैम, तो हम सोचे चलो अभी फोन लगाते हैं, बातचीत करने के बाद फिर खाना खा लेंगे मैम। जी, तो आज एक फरमाइश है, गाने के बोल है सोमवार को हम मिले यही, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं, कभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
8: प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM
1: नमस्कार, मैं
0: में। नमस्कार
1: मधुसरे से राजीव कुमार बोल रहे हैं, काम सुनना है।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
0: क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं हो रहा है।
0: अच्छा, नाश्ता वास्ता हो गया?
1: खाना हो गया।
0: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: फरमाइश है, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला।
0: डेडिकेट भी है
1: सुनने वाले सभी दोस्तों।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: बाबू का नाम बाबू हैदराबाद।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
5: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
4: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: All right.

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 आमजेड पर।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
4: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।

0: हर शुक्रवार को है फ्री ओपीडी, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9790076575।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291। कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: इंटरनेशनल यूथ पार्लियामेंट
7: मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
9: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
8: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
10: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: month-long Seva Sankalp Abhiyan from 17th of this month to mark 25 years of Prime Minister Narendra Modi in public life. Forecast of heavy rain over eastern and northeastern states for next 24 hours. And in US Open tennis, Ben Shelton enters men's singles semi-final, beating defending champion Carlos Alcaraz. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24

0: घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दीक्षानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ज्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नौवां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है। इसमें राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनवाड़ी केंद्र उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहां पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज वहां पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहां प्राप्त करते हैं।
0: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका नैतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशस्त्र सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जांच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बम्बई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुद्दुचेरी में तट्टान सावड़ी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड

0: आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस डियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395561 या 97-0096-575।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: ऑलराइट।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: ऑलराइट।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: All right.

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
8: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: All right.

0: पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 97-0097-06-575।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 में, HF डिलक्स 77,426 में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 में और प्लेजर प्लस 85,701 में।
1: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 97665-65750।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: समय कबीरदास जी एगो समाज सुधारत रहलन आ समाज के हर पक्ष के धैले बढ़न, ओई में से वो पक्ष के वर्णन उन्हीं के रचना, कबीरदास के रचना सुना रहल बानी, ध्यान देब सभी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 या 9956 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या

0: डायमंड हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: 90.4
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87894 18744।
10: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
11: हेलो
12: हेलो, नमस्कार।
11: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग नाइन।
12: जी मैम, कैसे हैं?
11: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: जी हम भी अच्छे हैं मनोरमा मैम।
11: जी जी,
12: क्या बात है, आज भी आपसे बात हो गई।
11: जी
12: बहुत खुशी हुई, एक नंबर का कॉल लग गया मेरा।
11: जी लेकिन एक बात बता दूँ आपको, आप सरसों से बोल रहे हैं?
12: जी मैम।
11: तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ।
12: जी बोलिए मैम।
11: जी आप तो बहुत मुश्किल से फर्स्ट बार कॉल करते हैं, लेकिन जब हम कॉल बजाने जाते हैं तो आपका कॉल पीछे हो जाता है।
12: मैम हम दो दिन मतलब तैयार किए हैं, तब कल बजा था।
11: जी जी हाँ, तो हम बोले कि आप फर्स्ट बार ही कॉल करते हैं, तो क्या ना जब कॉल हम लोग निकालते ना तो इधर उधर हो जाता है, तो इसकी वजह से लेट हो जाता।
12: मैम नहीं, एक बार और किए थे लेकिन लास्ट में तो बातें में बोली थी कि बजेगा फर्स्ट में, लेकिन बजा नहीं।
11: अच्छा,
12: बताइए कितना कोशिश करके लगाते हैं एक नंबर में हम।
11: जी जी, अब इसमें हम लोग का ही कर सकते हैं बताइए, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि हाँ आप कहीं बजे, लेकिन जब हम लोग कॉल निकालते हैं ना इसमें से तो कॉल इधर उधर हो जाता है, इसके लिए आप नाराज तो नहीं है?
12: जी मैम नहीं, मतलब कहने वालों ने कहा है कि कोशिश फिर से करना चाहिए, फिर से कोशिश कीजिएगा मैम।
11: जी जी कोशिश तो सर भी करेंगे,
12: इसके लिए हमको बहुत खुशी लगी। और मैम वो रानी जी है, बहुत लंबा बात कर रही थी।
11: जी जी,
12: उनका फरमाइश मतलब अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है हमको उनका फरमाइश, बातों के साथ फरमाइश भी अच्छा लगता है। और वहाँ कहाँ का सुनील जी है, उनका भी अच्छा लगता है फरमाइश। मैम वो तो क्यों नहीं चल रहा है?
11: तो अभी इसलिए नहीं चल रहा है कि
12: मैम तो आ जाइए, आप भी चलाइए ना।
11: तो मैं तो चलाती, लेकिन अगर आप लोग इतना मुश्किल से कॉल कर रहे हैं, लो ये नहीं बजेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, इसको भी तो बजाना जरूरी है।
12: एक बात है, ये शो तो इम्पोर्टेंट है, ये शो तो इम्पोर्टेंट है।
11: जी
12: हेलो माइक्रो, मैम तो मेरा नाम बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद की पहचान में। जी मैम, तो हमको इतिहास में से गाना सुनाइएगा आज। बता संगीत है, गाना का नाम है चोरी चोरी।
11: क्या गा के बता सकते हैं?
12: गाना चाहते नहीं इसलिए मेरा आवाज अच्छा नहीं
11: सुनिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है,
12: कोई सुनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा इसलिए।
11: आपका आवाज अच्छा है इसीलिए तो बोले जाने के लिए।
12: नहीं आप तो सबसे बोलती है, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनते हैं तो, कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करते हैं, खासकर आपका कार्यक्रम आता है तो।
11: अच्छा जी,
12: क्योंकि हिंदी टीचर जो है राधे मुखर्जी, उनका आवाज और आपका आवाज मिलता है।
11: ये बात है,
12: हर बहुत अच्छा लगता है हमको सुनने में। लेकिन रेडियो सिस्टम तो इतना लगा है ना, हर कोई काम करके ये सुनते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा आदत लग गया है हमें इसका।
11: चलिए बहुत अच्छी की बात है। जो गाना बताए हैं वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
12: हाँ डेडिकेट है, आप भारतीय रेडियो
11: दोस्तों
12: हमारे पसंद करने वाले हैं गाना, सभी को हर जो नहीं पसंद करेंगे उनको भी।
11: नहीं नहीं सबको पसंद करेगा ऐसा हम थोड़ी है।
12: मैम बताइएगा गाना कैसा है?
11: गाना तो बहुत अच्छा है
12: जी, तो कोशिश कीजिएगा इतना बजाने का।
11: जी जी
12: थोड़ा भी लोग लाएंगे हमने, तब तक चलिए
11: जी बाय। प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
12: ओके मैम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो टीम 90.4 में।
1: थैंक यू।
0: जी चले अरुण जी,
1: बस ठीक है जी। आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी बढ़िया है। लो
1: जी, गाना सुन रहा है मैडम जी?
0: बता दीजिए।
1: आज आप किसको पुकार रहे? मेरे मित्र हो, मेरे मित्र हो, मेरे मित्र। मैं गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: गोपालगंज सारे वार्ड नंबर 2।
0: गाना का बोल एक बार और बता दीजिए।
1: आज आप किसको पुकार रहे? मेरे मित्र हो, मेरे मित्र हो, मेरे मित्र।
0: और गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: जी? पूरा अपना रेडियो के जितना भी प्रोटागर है, जितने भी प्रेमी आदमी है, उन सबके लिए कर देना।
0: मित्र

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर।

0: दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करे 94512-11001।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हर वक्त हर लम्हे अजीज होते हैं दुनिया में, वो खुश नसीब होते हैं। हर वक्त हर लम्हे अजीज होते हैं दुनिया में, वो खुश नसीब होते हैं। दूर से तो हम इतना याद करते हैं उन्हें, दूर से हम इतना याद करते हैं उन्हें, क्या हाल होगा जब दोनों करीब होते हैं।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
6: सुल्तान डिस्ट्रिक्ट सिवान से लाल दिल्ली में हूँ। कैसी है?
5: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
6: हाँ मैं भी अच्छा हूँ।
5: हाँ, और आपका?
6: मेरा तो हो गया, तो नाश्ता कर लेता हूँ और नाश्ता वास्ता हो गया है।
5: आपकी आवाज कट रही है।
6: आप सही है ना?
5: हाँ हाँ, आप सही आ रही है।
6: धूप थोड़ा है ज्यादा, आज दो दिन से बारिश हो रही थी बीच में, अभी नहीं हो रहा है। तो धूप है, हवा भी है, और समझिए अगर धीरे धीरे तो गर्मी जा ही रहा है, कुछ गर्मी अक्टूबर पड़ेगा।
5: जी जी।
6: और सब बढ़िया है?
5: जी सब बढ़िया है।
6: योर वोट ऑफ चॉइस बंद हो गया क्या?
5: नहीं नहीं, चलेगा।
6: चलेगा
5: जी।
6: अच्छा,
5: आज नहीं चलेगा, 2 दिन बाद चलेगा।
6: अच्छा, 2 दिन बाद चलेगा।
5: जी जी, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से।
6: हाँ हमको पता है
5: जी।
6: हम रेल जीव का ध्यान रखता हूँ, बड़ी खबर मिलता रहता मुझे।
5: अच्छा जी।
6: हाँ तो भैया पुराना लिस्टनर है, वो हमको हम चलेगा नहीं?
5: जी बिल्कुल।
6: वो आज गाना सुना दीजिए, टिप मोरा का टिप टिप बरसा पानी। डेडिकेट है मोरा का टिप टिप बरसा पानी। डेडिकेट है सबसे पहले आपको, आयशा अर्नब सिद्दीकी, दुनिया परवीन अख्तरी, अहमद अली, अबीना सब्बा सिद्दीकी, रोशनी कुमारी, एना हजरा और निशा सुकुनवा, भास्कर भर्जू, उमा शंकर, दिलीप राम, मुकेश, उत्तम सोनी, उमा शंकर और जितने लोग सुन रहे हैं, दिवेंद्र सिंह, जितने लोग सुन रहे हैं, समीर आलम, नाम हुसैन, सबको सुनवा दीजिएगा। नमस्कार।
5: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: मैम हम भी ठीक है मैम। तो आप सब बताइए कैसी हैं, क्या खाना वाना खा कर आई हैं कि नहीं?
1: जी जी, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और खाना भी हो गया। और आपने खाया?
0: जी मैम।
1: तो क्या कर रही थी अभी आप?
0: जी मैम बैठे हैं, फोन लगा रहे थे। 41 बार लगाए हैं फोन, 11:30 तो बीच में छोड़ दिए, देखने लगे मोबाइल, लगता ही नहीं है।
1: लेकिन हार नहीं मानती हूँ।
0: देखिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, गंगा नदी कभी पार नहीं होती।
1: जी जी, बात तो बिल्कुल सही है।
0: कोशिश करिएगा तो एक दिन मंजिल मिल जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: अब मैम गाना सुनना है,
1: बता दीजिए।
0: अब राजा बाबू में के जो तीज नहीं करती थी वो अमर पाली, और उसी में के गाना सुनना है मैम।
1: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
0: मैम आपको भी, मैम को जितना तीज व्रत करती हैं सभी बहने श्रोताओं को सुनाना चाहती
1: हूँ। ओके, वैसे अपना नाम नहीं बताई
0: मैम। हम हाजीपुर से बोल रहे हैं मैम, सुनीता देवी।
1: ओके जी, तो सबको घर परिवार में ठीक है?
0: जी मैम सभी ठीक है, बच्चा लोग पढ़ने चले गया है, लोग हम भी अकेले हैं, एक बजे आएगा लोग पढ़।
1: उनके लिए खाना वाना तो रेडी हो गया?
0: जी मैम, आप रेडी करेंगे दोपहरिया का खाना?
1: जी जी ठीक है, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगसिम 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैम।
9: नमस्ते,
10: कैसी हैं?
9: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए।
10: मैं भी ठीक हूँ, आज तो खाना खा ली।
9: और आपने?
10: मैं भी खा ली।
9: वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
10: नवादा से।
9: कहाँ से?
10: नवादा से।
9: अच्छा, और आपका नाम?
10: प्रीति।
9: प्रीति
10: जी। प्रीति।
9: अच्छा, और बताइए।
10: और सब ठीक है? गाना सुना
9: बता दीजिए।
10: बता रही हूँ।

0: जी, आप तो बहुत अच्छा गा रही हैं
1: जी। थैंक यू मैम
0: जी। अब जो गाना बताई है, आपको गाना किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको, भारती मैम को, मेरी बहन को, और मैम ये जो सॉन्ग है ना, वो श्रेया घोषाल का है, न्यू वाला, वही बताइएगा।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम, थैंक यू
0: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजीव 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम जी। बढ़िया सुनिए, अपन बताएंगे।
0: ठीक
1: तो क्या होता है?
0: ठीक बनी हुआ।
1: हाँ ठीक बनी रहुआ।
0: हाँ वो अब ठीक बनी पहले से।
1: पहले से आराम बन।
0: हाँ जी पहले से आराम बन।
1: ठीक आराम बन। नाम बता दिया अपन।
0: रेशमा बोलते नहीं?
1: कहाँ से?
0: रेशमा बोलते पठान पड़ी।
1: अच्छा तो
0: पहचान गए? नहीं
1: पहचाना तो बोल नहीं मैंने, लेकिन फिर भी पूछो जरूरी बात।
0: हाँ एक और सुनिए, फिर जब पूछे तब ना सब कोई पूरे मालूम चले के कहाँ से जुड़ा हुआ ना। जी
1: जी सब लोग सुने ला ना।
0: सभी जुड़ रहे घर गाँव से जुड़े दी रानी बाड़ी हर अपनों से। बहुत बात कर ली। ज्यादा देर ले बात होगा रिकॉर्डिंग पट्टी बजा दे गाना कौन सी के
1: कौन सा
0: कैसे हो जाना प्यार से लड़ते लड़ते
1: और गाना कैसे
0: सुनाए बासी में सोनी में जितना लोग रेडियो सुनता सब कोई सुनी। ज्यादा लामा टाइम है का मिल
1: ना ना दो तीन दिन में चले
0: लगे
1: टाइम मिले स्टार्ट कर दे
0: टाइम मिल तो स्टार्ट करो बस एक बजे से।
1: चलिए फिर तो
0: ठीक
1: प्ले करते हैं।
0: ठीक
1: जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: राम राम साहू, गुना से।
12: जी, कहाँ से?
13: मेरा नाम है चमेली।
12: जी, और कहाँ से?
13: मैं हूँ मौलाना अलवेली, गुना से।
12: अच्छा, तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
13: एक गोटे डाल लेगा जब निकलू जब डाल।
12: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
13: सभी को सुनाना चाहूंगा, पर जी रेडियो विभाग में।
12: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: कब बजेगा ये गाना?
12: शाम को बजेगा, 5 से 7 के बीच।
13: ठीक है भाई।
12: ओके, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम। जी कैसे हैं आप?
1: मैडम जी खाना खा रहे हैं और आपसे बात चल रही है।
0: अच्छा, तो और सब बताइए, आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
1: सब ठीक है, और सभी रेडियो सुनते हैं हमारे घर में।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी की बात है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: आज की फरमाइश रहेगी, पिक्चर का नाम है हम तुम्हारे सनम, और इसमें गाना है गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, तकिया और एक अम्दो, एक ही रजाई, सर्दी कैसे जाएगी।
0: ओके, डेडिकेट भी है।
1: जी जी मैडम, सबसे पहले आपको है गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल चंदेल है, मांगीलाल धाकड़ है, गोपाल ओझा जी है, जीतेन धाकड़ जी है, इन सभी लोगों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा, जितने भी रिमझिम सुन रहे हैं उनको भी रहेगा।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
2: गले में

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो, राधे राधे।
8: राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 एफएम में।
7: गोपाल बोल रहा हूँ, ग्राम पटोरसा जिला।
8: क्या हाल चाल है गोपाल जी?
7: बढ़िया है, घर पर है अभी से, धूप में जल रहे।
8: कहाँ से बोल रहे हैं?
7: जिला गुना।
8: क्या हो
7: रहा? मनोरमा जी बोल रहे हैं आप?
8: जी हाँ
7: जी, आपसे तो बहुत दिनों बात हो रही
8: है। तो क्या काफी दिन बात करते हैं?
7: हाँ जी, अभी तो क्योंकि लगाया था 2 सितंबर को लगाया था, आई लगाया। गाना सुनना है?
8: बता रही
7: है। सुनना है वो दिल वाले सुनने ले जाएंगे, कुमार सानू लता मंगेशकर की आवाज में। वो जी देखा तो जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम, ये वाला डेडिकेट भी आएगा।
8: बता रही है।
7: सुनील साहू जी है, ज्योति साहू जी है, जीतन धाकड़ जी है, और आपके लिए भी है, और प्रेम जी सुनने वाले को भी है।
8: गाना आपका
7: कर दीजिए।
8: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: थैंक यू
1: मैम। और कहाँ से?
0: नूर बात कर रही हूँ।
1: तो क्या है आपकी फरमाइश?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: कौन सा?
0: पाकिस्तानी सॉन्ग।
1: ओके, और डेडिकेट भी है?
0: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्त को और आपको।
1: ओके जी, तो पसंद है आप?
0: थैंक यू
1: जी।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की।

0: का निशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
3: जी मैं सुबह
2: जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उधर का मौसम का क्या हाल है?
2: मौसम धूप तो निकला हुआ है,
3: लगातार बारिश हुई। कल तो बहुत जोर से बारिश हुई और अभी भी बारिश होने की संभावना है। लगातार अभी 7-8 दिन से बारिश होते हैं। आज सुना दिए मैम पुरानी फिल्म में सच्चे फिल्म का गाना, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन राखी जो है जिनका गाना है, महेंद्र कपूर की आवाज में, गीत के बोल में मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल बनके एक तरह के गीत वो तितली खिलके फूल बन गई।
2: एक बार और
3: मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की फूल तितली खिलके फूल हो गई। जी सबसे पहले मैं आपको और जितने भी रेडियो रिंगिम के लिसनर है सबको सुनाना चाहता हूँ।
2: चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
3: जी मैम जी
2: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।
3: थैंक यू।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगी दीदी, बिहार भागलपुर जिला तिनसंगा दियारा महाराज टोला से बोल रहे हैं।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हो? हम लोग गंगा कटाव में हैं, मेरे घर में सब हेलो रेडियो इंजन सुनते रहती है।
0: अच्छा जी,
1: मेरे बेटी सब है सपना कुमारी, ऋषि राजकुमार साहब, गाना सुना है चली आना फोन की दुकान से।
0: कौन सा?
1: चली आना फोन की दुकान से।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: अभी
0: गाना आप किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं?
1: राजकुमार है, हिमेश कुमार है, सपना कुमारी, बहुत सारे भाई दोस्त को।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: चली आना।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
7: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
6: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
12: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
13: अभी ठीक है, आप लोग दुआ से।
12: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
13: हम बोल रहे हैं ओम साई कलर्स बंजारी रोड स्टेशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
12: चलिए, तो कैसे हैं आप?
13: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
12: जी हम लोग भी बढ़िया है।
13: चलिए बढ़िया के काम है
12: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
13: जी जी नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
12: हाँ हाँ हो गया।
13: ठीक है।
14: तो फिर क्या है
13: आपका नाम मैम?
14: जी मेरा नाम मनोरमा।
13: मनोरमा, अच्छा आज दूसरी बार बात हो रही है।
14: जी जी।
13: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
14: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
13: मैम गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
14: चलिए कोई बात नहीं,
13: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
14: जी जी बिल्कुल।
13: नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, बस इतना ही।
14: जी इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
13: कहाँ इतना गा रहे हैं, आप लोग सब सुर चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
14: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
13: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
14: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गा है। अब जो गाना बताया वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
13: पहले तो आपको और जितना रेडियो और इंडियन दोस्त सुन रहे हैं सभी लोगों का साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
14: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: थैंक यू मैम।
14: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो और इंडियन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन में।
0: सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, करियावाद नंबर 1 से। कैसे हैं मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं
0: मनोरमा मैम
1: जी।
0: योर वॉइस योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: ये सुर चलता है
1: जी जी।
0: तो आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मुझे से। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: क्या
0: बताए मैम, मेरे सनम बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी। ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो इंजन जहाँ से सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: आपका
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 62052-62112 पे।
12: दोस्तों, तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
14: जी नमस्ते मैम।
13: नमस्ते,
14: कौन बोल रही है मैम? भारती मैम या मनोरमा मैम?
13: मनोरमा
14: जी बोल रहे हैं मैम। की हम सिद्धार्थ बोल रहे हैं बरौली से।
13: जी जी, क्या हाल चाल है?
14: ठीक है, अपना बताइए। अपना बताइए मैम, आप ठीक है?
13: जी जी, मैं बढ़िया हूँ।
14: ठीक है मैम। मैम गाना सुना था ऐसे तेरी याद आती है,
13: क्या दो लाइन गा के बता सकते
14: हैं? गाना नहीं गाते हैं, वो सुनते हैं।
13: अच्छा जी, दो लाइन ही गाना है आपको?
14: आगे चाहिए, आगे कोशिश करेंगे, अभी नहीं।
13: ओके जी, और गाना डेडिकेट भी करना
14: सब रेडियो सुनने वाले सभी भाइयों को, आपको और भारती मैम को।
13: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपको।
14: थैंक यू मैम।
13: जी

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गाना तो रिकॉर्ड होता है और बाद में बहुत लेट से बजता है।
0: जी जी, क्या है ना, बहुत सारे कॉल आ जाते हैं तो फिर आगे पीछे हो जाता है।
1: आज तो हमारा लेट है, लेकिन उस दिन फोन किए थे सोमवार को, तो लग रहा था कि तीसरे नंबर पे थे हम।
0: अच्छा,
1: लेकिन गाना बजा लास्ट में।
0: नहीं, कोई बात नहीं है, जो लास्ट में करता है उसका ही पहले बजता है, क्योंकि कॉल आगे पीछे हो जाता है। तो फिर क्या है आज की फरमाइश?
1: फरमाइश की राजा हिंदुस्तानी का टाइटल सॉन्ग बजा दीजिए मैम।
0: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: सभी को, डेडिकेट सुनने वाले श्रोता सभी को।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009494911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

परम आदरणीय श्रोता बंधु चाचा चाची भैया भाभी काका काकी सभी के पैर छू के प्रणाम करता नहीं रोरा सभी बनल बनी रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर और रेडियो रिमझिम 90.4 MHz पर कार्यक्रम शुरू होके जा रहल बा शोटे वर्जा भार रवा सवे के फरमाइश पर रेडियो रिमझिम लेके आ गेल बा भोजपुरी माटी के एक नया सौगात। इस कार्यक्रम में हमने के रवा तक पहुंचे के कोशिश करम सन और कार्यक्रम कैसन बा कैसन लागल जरूर बताई कैसे नया सौगात बाटे सोटी बिरजा भार कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में हम बानी रवा साथे राव दोस्त अमरीश और उम्मीद बा की आपके ये कार्यक्रम बहुत पसंद आई। तो चलिए बता देता नहीं कार्यक्रम में छोटी बिरजा भार में स्वर बाटे मास्टर इस्माइल के और खुश मोहम्मद जी के। तो चलिए लुफ्ट उठावल जाओ छोटी बिरजा भार के।

अब देखिए आगे शहर केदली बन जंगल पड़ता, अभी है शहर में हम जाता नहीं। आ देख ली केदली बन जंगल के बात ही बा, वहाँ सबसे बड़ा जानवर केदली बन जंगल में बा, जौने के जालिम सिंह नाम है। आ वो 14 कोस के राज में एक को आदमी के नहीं छोड़ ले। अब बिरजभार वो रास्ता कैसे थक के जाई है, लेकिन बिरजभार के मालूम नहीं खे जी केदली बन जंगल में ये जालिम सिंह दानवा रहेला। आ जालिम सिंह दानवा एगो बुढ़िया के सहारे बाटे। देखी वो जो बुढ़िया बा चल गए बा दानवा चरौरी में, तब बिरजभार यहाँ से जा रहा बाड़े। तब बिरजभार के देखले भी बुढ़िया तो रोतिया हंसतिया।

0: दुर्जभार बुढ़िया से का कहतण। ए बुढ़िया, काहे तू रोताड़ू आ काहे हसताड़ू, एकर भेद के बताइबू कुछ। ए बुढ़ा सुना, हम एगो जोगी फकीर आदमी है, ये बात के बताइबू तब न हम कुछ समझ कि काहे हसताड़ू आ काहे रोताड़ू।
1: ए बाबू
0: कह,
1: हम यही खाती दुआ तानी आज यही खाती हसा तानी।
0: हाँ
1: कि हमारे बाबू तू केहू के लड़का हो खब।
0: हाँ जरूर है।
1: आ तो हरिये तोरे हमारे बाबू रहले बाबूआ रहले।
0: अच्छा
1: आए जा एगो जालिम सिंह नाव के धनवा बा उतारा के पा जाए तो घोट गले घुमा दे हमारे बाबू। ए हमर बाबू
0: कहा बुढ़ा,
1: हम वही के नौकरी करी ले आ जब कहीं से आवेला चोरी के।
0: हाँ
1: तो करे देही पर है मुड़ा देखता रहनू।
0: अच्छा
1: यही से खूब पीटी ले थी मानु कहले आवेला तू एजा से भाग जाए हमर बाबू भाग जा।
0: अरे सही सही भेदवा बुढ़िया हमरा के।

0: सुन लो तहर ना पाए हमर बापू।
1: ए बुढ़िया माई, हमरा के लोग दुर्जाभार कहला।
0: आए?
1: हम यह रास्ता पकड़ के हमरा सोरठपुर जाए के बा। आ देखा, हम केदली बन जंगल में आ गए बानी। केदली बन जंगल में हम यह चाहतनी कि कोनो तरह से पार हो जाई, लेकिन रास्ता दूसर कोनो नहीं खे।
0: एगो कार करो।
1: कहा?
0: अगर तारा बचे के बात तो
1: हाँ,
0: तू जेबे करवा सोरठपुर।
1: अरे हमरा गइल बहुत जरूर बा, चाहे हमार प्राण रही है चाहे चल जाई है, लेकिन हम तो सोरठपुर जेबे करब।
0: हमरे आचरा के भीतर लुका जा।
1: अच्छा
0: ठीक न।
1: हाँ।
0: आ जब आई जालिम सिंह दानवा
1: हाँ,
0: तो कही थी मानुक थी मानुक थी मानुक महक जाला।
1: अच्छा
0: कहीं पैसा कौड़ी रहला तब, आदमी रहला तब, जी जानवर रहला तब हाँ, महक जाला ओजा पर हूँ जाला।
1: ठीक बा, हम तरफ पिछुआरे लुका जाई।
0: पिछुआरे काहे के लुकाइबो, तब तक देखिए तब तक मुआजा दे या हाँ, हमरे आचरा में लुका जा।
1: अच्छा हम तरह आचरा में लुका जा तनी। आ लेकिन
0: जब आई
1: हाँ,
0: तो जब कही थी मानुक मानुस मानुस मानुस, तो हम कम हम नहीं एगो मानुस बनी। आओ ना तब हमरे के खो तो कही कि तू हमरा पर तो मुहरा लगाओ, बस लगा मार है, मारते मारते मारते जा सुता दे, बस उठ के भाग जाइए।
1: अरे बड़ा ने की कैलू ये माता बुझलू।

0: मानुष ए जी तो केहू मानुष नहीं कहे हमारे बाबू अरे इतना दिन से बारी हो आ मानुष मानुष कैले रहे लो लन हमें के खाना एक हमें तो बानी
1: है बुढ़िया
0: कहो
1: ते आज पुरानिया ना रहते ता तोरा के कब्बे हम घूट के खा गए जाते
0: हमरा के का खाइबो घूट के
1: आदमी के गंध आवता
0: कहा ये जो आदमी का गंध बा लन हमें के मुआ दो हमें ते बानी
1: आदमी सामर बा कबो गोर होता ओके खाए बोल कहाँ बा
0: हमारी अब वाणी हमारी के खा लाया
1: नहीं खा
0: खा ला हमारी के

0: जालिम संसारी
1: छुटिया रहल बा
0: आज तोरा का छोड़ ना सकिले हाय बुढ़ी बिया कहती है जा केहू नहीं के हमरे के खो तोरो नट्टी दाब के मुआए
1: आए हमरा के तुम्हार देब देखा मरले से पहले हमरे नाव बिरजा भार पहले हमरा तारा लड़ाई होई यदि तू हमरा से बाजी जीत जइबा न तू हमरा के मरबा
0: हार तो चल

शालीन सिंह दानवा घोट घल लेबा। जब घोट घल लेबा, जब पेट में पहुंच गए बड़े बिरजा भार, इनके अकेले हरा गए बा, तब जू अपने गुरु के सुमरत ने कैसे अरे सुनबा गुरु अरे हमरे बचनिया से। ई दानवा के पेट पे से बोल रहा बड़े,

0: हाँ गुरु
1: देखा।
0: हाँ
1: कहाँ से बोलता रहो?
0: अरे हम दानवा के पेट में पानी आ दानवा हमरा के घोट घल्ले बा।
1: का केदली बल जंगल में चल गेल बड़ा?
0: हाँ
1: आ दानवा के पेट में ढूक गेल बड़ा,
0: ढूकल बानी
1: घोट लेले बा तारा। हाँ। के बाकी तारा के तब जिंदा ना छोड़ी।
0: उहे त हम देखा तानी कि आधा धर हमार घोट घल्ले बा आ पेट में से हम बोला तानी। आई सुना तानी कि दानवा के केहू मारियो ना पावेला, एकर प्राण कहाँ बसेला? ए गुरु तू ही बताइब।
1: हमरे नाम गोरखनाथ।
0: अच्छा
1: तू हमार चेला हब। हमरे रहते भर में दानवा तारा के ना कबू।

0: तनी सुन ला बिरजा भार।
1: बताओ उपाय।
0: तारे झोरी में छुड़ी बा, छुड़ी निकाल ला कल से ना, दांत के सहारा से उकरा के खोल लो आ दानवा के पेट चीर दो, चीर के बाहर निकल जा।
2: हे गुरु।
0: बाहर निकलने के बाद से ओकरे नाभि के सामने उ छुड़ी मार दो, ओ जा ओकर प्राण बसेला तुरंत मर जाई। दूसरा बात सुन लो ए गौरी, जब दानवा मर जाई तो ओकर दहिना जांघ चीरी हो, ओमे से एगो बहुत सुंदर देव कन्या निकली, उहो तारा से बियाह करे के कही। अब तू समझ लिया।
2: अच्छा हे गुरु, अब छुड़ी हम निकाला तानी, आई दानवा के यही नाभि के सामने मारा तानी,

0: ठीक नहीं कैले।
1: ई बुढ़िया पेट में पैस के हमार जान मरौलसिया।
0: अब देखी वहां से बिरजा बाहर निकला तने दहिना जान चीरा तना तुम्हें से देव कन्या निकला तरी आ निकलते बिरजा बाहर से का कह तरी।
2: अरे सुनी तो सुनिए सब।

0: आ बजू कहते बिरजा भार कि देख तारा के सचमुच साथ में लेके जाती, लेकिन हम वादा करतनी कि जब हम सूरजपुर से लौटब, जब सूरजपुर से लौटब तो तारा के वादा करतनी कि तारा के लेके चलब हम अपने राज में। अब उन्हें बुढ़िया का कहती है,
1: अरे अमर बाबू तू तो देव कन्या के साथे लेके चल जाइबो आ हमरे विषय में कोनो बात सोचला हुआ।
0: अरे बुढ़िया ये हम सब समझता नहीं कि 14 कोस के जंगल बाए जंगल में तू ही एगो बचल बाड़ू। हाँ। एकरा पहले तो जालिम सिंह दानवा सब जने के मार के मुहा दल रहा, सब जने के घोट खल रहा, अब एगो तू ही नहीं एगो बेसहारा बाड़ू।
1: हाँ ये बाबुआ बिरजा भार कोनो हमरो उपाय सोच द।
0: देख हम तारे के उपाय से चतनी कि तू
1: अच्छा
0: आ जौन है देव कन्या वाली।
1: अच्छा
0: ये दोनों जने कुछ दिन तक बस यही जंगल में गुजारा कर ले जा, आ जब हम सूरजपुर से लौटब तो तहलों के दोनों जने के सोने के विमान पर बैठा के लेके चल चलब हम अपना देश के, आ तहरा के महातारी के तरह से मानब आ देव कन्या के अपन रानी बनाए।
1: ठीक भाई हमर बाबू तारे साथे हम पार लागी जाए।
0: अब देखी अब वहां से अब प्रस्थान आगे के करतन जोगी बिरजा भार
1: कहा जाता है
0: अब वजू से चलता

0: राज्य में शराबबंदी प्रभावी ढंग से लागू है और आगे भी जारी रहेगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में आई कमी, लगभग 42 लाख की आबादी अब भी बाढ़ की चपेट में। और मौसम विभाग ने औरंगाबाद, गया, नवादा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 साल पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जन सेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
1: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
0: भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए सेवा ज्योति कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो गांव और शहरी क्षेत्रों को जोड़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में शराबबंदी प्रभावी ढंग से लागू है और आगे भी जारी रहेगी। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री चौधरी ने कहा कि शराबबंदी का फैसला आधी आबादी को सम्मान देने का फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे कोई समझौता नहीं होगा।
2: मेरा यह मानना है कि यह ऐतिहासिक फैसला है। नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में यदि सबसे बड़े फैसले लिए होंगे तो वो शराबबंदी, और शराबबंदी से हमें नुकसान है, लेकिन बिहार के महिलाओं के समर्थन के लिए उनके ही संवाद पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसमें फैसला लिया। तो बिहार की आधी आबादी का सम्मान शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा, कोई समझौता नहीं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी है। बंद पड़े 10 चीनी मिलों को फिर से शुरू कर दिया गया है और अगले 5 वर्षों में 25 चीनी मिल शुरू करने की योजना है।
2: अभी तक एनडीए की सरकार ने 10 चीनी मिल चालू कर दिए बिहार में। अभी 3 चीनी मिल और सकरी में, रेहाम में, दरभंगा और मधुबनी के इलाके में, सासा मूसा गोपालगंज में, और चौथा नंबर पर हमारा मोतिहारी है। आज 10 चीनी मिल बिहार में चालू है, जिसमें 100% बंद हो गए थे रोजगार, और आगे एकदम टारगेट है अगले 5 वर्षों में ये 25 की संख्या में बिहार में चीनी मिल को शुरुआत कर देना है।
0: गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश की लगभग 42 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 84 प्रखंडों की 517 पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच 30,000 से अधिक सूखे राशन पैकेट का वितरण किया गया है। साथ ही 5,500 क्विंटल से अधिक पशु चारे का भी वितरण किया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1,872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदियों का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सुल्तानगंज में गंगा नदी उच्चतम बाढ़ स्तर से अभी भी 2 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। हालांकि पटना के तीखा घाट और गांधी घाट पर नदी के जलस्तर में आज 7 सेंटीमीटर कमी दर्ज की गई। मुंगेर में नदी का जलस्तर लाल निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर है। आयोग के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने से अगले 24 घंटों के दौरान स्थिति में सुधार आने की संभावना है। इधर पुनपुन नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि नदी अभी भी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर बनी हुई है। सोन नदी का जलस्तर भी मनेर में लाल निशान से 1 मीटर ऊपर बना हुआ है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी का जलस्तर भी विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। इधर शेखपुरा जिले के खाटकुसुम्बा प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली गंगा की सहायक हरोहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से पानापुर पंचायत के 5 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। पुनपुन नदी के जलस्तर में स्थिरता आने के बाद पटना गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। पुनपुन परसा बाजार रेलखंड के बीच पुल संख्या 21 की डाउन लाइन पर अभी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। गौरतलब है कि इस रेलखंड पर 4 दिनों से ट्रेनों का परिचालन बाधित था। सारण जिले के केसरपुर और खुरहू कोठिया के पास माही नदी के क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत पूरी कर ली गई है। 2 दिनों के भीतर तटबंध को दुरुस्त कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने तटबंध का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को बाढ़ अवधि तक पूरी मुस्तैदी के साथ निगरानी रखने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने आज पटना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी किया और उनकी समस्याओं के तत्काल निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ज्यादा यातायात वाले 7 रेलवे नेटवर्क को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी है। इनमें हावड़ा से दिल्ली परियोजना भी शामिल है। यह रेल नेटवर्क पटना के रास्ते गुजरती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन 7 कॉरिडोर पर रेलवे का लगभग 40% ट्रैफिक होता है। 2000 किलोमीटर का 4 लेन का काम पहले ही पूरा हो चुका है।
1: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी दोनों डायगनल्स, दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से कोलकाता, ये दोनों डायगनल्स, फिर दिल्ली से गुवाहाटी। तो ऐसे करके जो 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की क्वाड्रुपलिंग यानी 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। एक एक करके 1x1 सभी प्रोजेक्ट्स को 4 लाइनिंग करने का है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के 168 टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से रोजगार प्रदाता बनने की अपील की। साथ ही उन्होंने छात्रों से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।
2: अभी तक आप अपने नौकरी की चिंता करते होंगे, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप स्वयं भी व्यवस्थित होइए और बिहार में नौकरी लेने वाले से बढ़कर देने वाला बनने का प्रयास का रास्ता खोलिए।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी मौजूद थे। देश को कुपोषण से मुक्त करने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित यह अभियान मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पोषण स्तर को सुधारने पर केंद्रित है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत निर्वाचन आयोग ने मधुबनी चित्रकला संस्थान से 50 मधुबनी पेंटिंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आयोग ने पारंपरिक कला और संस्कृति को दर्शाने वाली पेंटिंग के लिए स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही प्रत्येक पेंटिंग के साथ उसकी विषय वस्तु और कलात्मक विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण भी देना होगा। गया जिले के खुखरी गांव के शैलेंद्र कुमार का चयन रूस में होने वाले इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ के लिए हुआ है। यह आयोजन 11 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा। प्रदेश के ऊपर बने एक चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गया, रोहतास और भोजपुर जिले में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। सबसे अधिक गया के शेरघाटी में 90 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल औरंगाबाद, गया, नवादा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश की संभावना है।
3: दिनांक 10 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज एवं नवादा जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के विभिन्न महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर विभागों में कार्यरत 11 अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से क्लास लेने पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। नवादा के कन्हाई इंटर स्कूल परिसर में अस्थायी भवन से केंद्रीय विद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र आज से शुरू हुआ। सांसद विवेक ठाकुर ने शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन किया। पहले चरण में कक्षा 1 से 5 तक 200 बच्चों का नामांकन हुआ है। पश्चिम चंपारण जिले के इनरवा थाना क्षेत्र के छठिया घाट के पास से एसएसबी की टीम ने 2 किलो से अधिक चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। इधर कटिहार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग 32 लाख रुपए मूल्य के 406 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सुपौल जिले के बकौर पंचायत के मुखिया नंदन कुमार पंडित को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अररिया जिले में NH-57 पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर से स्कूली वैन में सवार 6 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों में से 4 को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजा गया है। कटिहार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने विभिन्न मामलों में वांछित 10 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से कल आरा में 1 दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 24 से अधिक कंपनियां लगभग 500 पदों पर नियुक्ति करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में शराबबंदी प्रभावी ढंग से लागू है और आगे भी जारी रहेगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में आई कमी, लगभग 42 लाख की आबादी अब भी बाढ़ की चपेट में। और मौसम विभाग ने औरंगाबाद, गया, नवादा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अब देखी जोगी बाबा कहाँ पहुँच गए ले, दुर्जाभार कहाँ पहुँचल बाड़े,
1: सुबुकपुर शहर में पहुँचल बाड़े। अब
2: बिरजाभार
1: ये जो पहुँच गए बाड़ा,
3: 14 कोस के राजबाऊ।
1: अच्छा
0: 14 कोस के राजबा
2: ओजा पहुँच गए बाड़ा,
0: पहुँच गए बाड़ा। लेकिन तनी आज हमार मन एने ने हो गए बा, तनी एगो कविता नाई कह के सुना दी।
2: अच्छा ठीक बा, सुन ले। जब यह विचार बा, ए बाबू सुनी लोनी।
0: हाँ
2: रंजीत भाई तनी रहू हमरा पर ध्यान दे, जानी कि नहीं देखी जे तरह पहले के नाच वाला लड़त रहले हसन नचनिया बुझी लेनु, ओहि तरह आजकल के सब बेसवे लड़त रहे सन।
0: बात सही है बा,
2: ए लोनी के बुझात न के कि दादा कोने तरह कलाकारी कइल जाला। मार जे चार गो गीत अगर सीख ले बाड़ सा तो स्टेज प्रोग्राम लेके टाना टन लड़त शुरू कर दिले बाड़ सा। के बात बताओ तनी।
0: हाँ कहाँ के बात है।
2: नाच होत रहे हमारे गाँव में,
0: वाह
2: लगन का टाइम रहे।
0: हाँ
2: गलती से नाच एक बाराती में लिखा गई रहे दू गो,
0: वाह
2: एगो हेने का और चंपारण जिला का और के नाच रहे।
0: हाँ
2: आ एगो हमरा ए छपरा जिला के नाच रहे।
0: वाह
2: अब तो चंपारण और के लौंडा निकलस बराती में।
0: हाँ।
2: नाच शुरू हो गए।
0: हाँ।
2: जब उन्हें के लौंडा निकलल महफिल में निकलल तो वहते का गावता भाई।
0: हाँ
2: गावता का कि ताल मात्रा की चीज यानी तीताला गौलस की उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: वाह
2: गिनती वाला चीज गौलस तो भला आजकल जमाना में।
0: हाँ
2: केहू बुझाता ताल मात्रा के चीज
0: ना,
2: चार गो गीत अगर सीख गई तो बड़का बे आसे हो गई बानी। बात झूठ नहीं कहत हूँ।
0: हाँ
2: हाँ अब तो जान ली जब लौंडा गौलस की उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: हाँ
2: बस वही मैं फिल्मा में दू जने बूढ़ बैठो रहे लोग।
0: हाँ
2: जब बुढ़ौलो इतना सुनल लो कि दादा रे लौंडा गावता कि उधो जब टेढ़ दिन आयो।
0: हाँ
2: तले एक जने बुढ़ो उठ के एक जने अपने संगती यू से का कहता।
0: हाँ
4: आ चला चला ए सरदू भैया, अरे बाप रे बाप, इत सधवे से ऐसा लौंडा गावता कि हमार मन नहीं खेला गोर। भागी चला ला।
2: अब ते बाबू दुए जाने बूढ़ मिल के बराती में समियाना में मार जे हंगामा मचा दहल लो।
0: वाह
2: तले जोन एने के नाच लिखाई रहे छपरा।
0: हाँ।
2: जिला का और के ओ में के लौंडा निकलल तो वा ओते तोड़ देना टनाक देना का गावता कि आरे हिले बलिया हिले छपरा हिले ला।
0: हाँ।
2: आ जब मारी ले नजरिया तो पूरा जिले में हिले ला।
0: वाह
2: अब तो बुढ़ऊ चल गए रहले महफिल के कुछ दूर फैले।
0: हाँ।
2: जब लौंडा के सुनले गावल की बाप रे बाप गावता कि अरे हिले बलिया हिले छपरा हिले ला, आ जब मारी ले नजरिया तो पूरा जिलवे हिले ला, तब बुढ़ऊ का कहता ने
4: अब बैठा बैठा ये सरजू भैया, अरे हौ लौंडा के डहल देखो डहले बाबू डहले, का रे लौंडा तोर कहाँ घर है लौंडा।
2: बाबू बुढ़ऊ घर द्वार लगले पूछे।
0: हाँ।
2: आ पूछते पूछते बुढ़ऊ खैले रहले पान, आ मुँह में एको दाँत रहबे नहीं कल कि पाने के पीते रोकाओ। बस अगवे एक जने हमरिये साने हीरो साहब टिनहिये बैठल रहले।
0: हाँ।
2: जब बुढ़ऊ कहले कि कार लवंडा तोर कहाँ घर है लवंडा।
0: हाँ।
2: तले वो पनवा का पितिया हीरो साहब के ऊपर चू जाता। तो हीरो साहब टंद न उठ के कहता ना अ बुढ़ा तुझको पान खाने की तमी नहीं है, पान खा के मेरे पैजा के थूक देता है।
0: हाँ।
2: तब बुढ़ऊ का कहता है आ चुप रह मर दे तू नहीं, अरे हौ लवंडा का डहल देख डहले बाबू डहले डहले।
0: देखी बकिए सोठी बिरजाभार के कहानी सातवां कैसेट में आपके सुने के मिली, हमरे तरफ से नमस्कार बा।
5: तो श्रोता लोग आज खातिर बस इतना ही, कैसन लागल चाचा चाची काका काकी कैसन लागल जरूर बताई 98527881 नंबर बाटे। इन नंबर पर कॉल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आप खत लिख सकता नहीं रेडियो रमझिम बंजारी मोर गोपालगंज 84/28 के पता पर। और हमके पता बा कि आप सबे के कार्यक्रम बहुत अच्छा लागल है, परम आदरणीय श्रोता बंधु लोग के प्रणाम करता नहीं पैर छू के प्रणाम करता नहीं चलता नहीं। अब फिर आयम एगो नया एपिसोड के साथ एगो नया कहानी के साथ फिर हुई पूरा मस्ती। तो अभी खातिर दीप विदा अपन दोस्त अमरीश के लेता नहीं जाए के विदा, ठंड से बच के रही और गरीब के मदद करी दी इजाजत, हंसत रही मुस्कुरात रही नमस्कार।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चम रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंद स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
11: All right.

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
9: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
9: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
10: हाय, कितना खूबसूरत है।
11: वाकई कितना खूबसूरत है।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
6: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
6: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
6: तो फिर देर इस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
6: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
13: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
14: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पारादीप पत्तन प्राधिकरण को आवश्यकता है एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की। कुल 2 पद उपलब्ध हैं। योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं रोजगार समाचार पत्र में विस्तृत जानकारी दिनांक 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में आपको आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यकता है एक कंसल्टेंट की। पद की प्रकृति अनुबंध आधारित है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट ndma.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना को आवश्यकता है पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड 1, प्रबंधक पर्यवेक्षक, लॉन्ड्री प्रबंधक, मैनिफोल्ड तकनीशियन और वरिष्ठ प्लम्बर की। वरिष्ठ प्लम्बर पद के लिए 4 रिक्तियां उपलब्ध हैं, मैनिफोल्ड तकनीशियन के लिए 2, जबकि अन्य शेष सभी पदों के लिए 1-1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की वेबसाइट www.aimspatna.edu.in। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के अधीन एक मानित विश्वविद्यालय है जो कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.education.gov.in। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए भर्ती हेतु आवेदन। प्रबंधक विधि कुल रिक्तियां 4, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी 1 रिक्ति। पदों से संबंधित आवश्यक शर्तों, योग्यताओं, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवश्यकता है उप महाप्रबंधक तकनीकी। पदों की संख्या 30 है तथा प्रबंधक तकनीकी इसके लिए भी पदों की संख्या 30 है। पदों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। आवश्यक जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.nhai.gov.in। बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अप्रेंटिस टेलीकॉलिंग रिक्तियां 150, टेली कलेक्शन एजेंट रिक्तियां 100, एग्जीक्यूटिव एटीएम रिक्तियां 40, एग्जीक्यूटिव ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस रिक्तियां 25, एग्जीक्यूटिव कॉलिंग रिक्तियां 40, प्रोक्योरमेंट मैनेजर 1 रिक्ति, एमआईएस एनालिस्ट 3 रिक्तियां, डिप्टी मैनेजर मानव संसाधन एवं प्रशासन 1 रिक्ति, एग्जीक्यूटिव 20 रिक्तियां, डेस्कटॉप सपोर्ट एनालिस्ट 20 रिक्तियां, डायलर कॉलिंग ऑपरेशंस 1, एएम डीएम लीड्स टेली कलेक्शन 6 रिक्तियां, एएम डिप्टी मैनेजर 1 रिक्ति, एग्जीक्यूटिव डेबिट कार्ड ऑपरेशंस 10 रिक्तियां, फील्ड कलेक्शन ऑफिसर्स 400, डिजिटल ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट 350 और आधार ऑपरेटर 400 रिक्तियां। योग्यता मानदंडों, नियम और शर्तों आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.bgss.in/careers। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है। संस्थान आमंत्रित कर रहा है लेखाधिकारी के एक पद को भरने के लिए आवेदन। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nios.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
15: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
13: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
16: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
19: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
20: All right.

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान।
5: .AIR@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
7: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 गुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
6: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
7: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी फोर लाइनिंग हो चुके हैं।
6: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
7: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
10: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में को कंट्रीब्यूट करेगी।
6: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को देखते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
6: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
12: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
13: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
14: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
6: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
15: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
6: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
16: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
6: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मुक्की में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
17: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
6: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
18: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
19: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
20: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
19: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
20: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
19: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
21: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
19: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
20: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
19: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
20: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
19: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
20: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
19: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
22: ठक ठक।
23: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
24: अच्छा मिला ही नहीं।
23: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
25: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
23: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
25: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
26: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
27: माँ अब घबराइए नहीं,
0: चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
20: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
20: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
22: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। पोषण जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने किया रवाना, फैलेरिया मरीजों की अब रात के अंधेरे में होगी तलाश, अवैध क्लिनिक पर प्रशासन का छापा, बाल श्रम के विरुद्ध भी पुलिस ने की छापेमारी, दो बाल श्रमिक विमुक्त, प्रेमिका से मिलने गए रात में एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की कराई शादी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत आज जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2026 का शुभारंभ जिलाधिकारी समीर सौरभ ने पोषण रथ एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा निर्मित पोषण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों एवं समुदाय के अन्य सदस्यों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य पोषण संबंधित व्यवहार को बढ़ावा देना है। इस वर्ष पोषण माह का मुख्य विषय हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं गर्म पका भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल विकास हेतु पोषण में प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृ स्वामित्व जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर आज जिलाधिकारी समीर सौरभ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
27: जो है राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है, नवा राष्ट्रीय माह, इसमें 5 विभिन्न थीम है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है कैसे बच्चे और जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पे कैसे जोर दिया जाएगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। विभिन्न गतिविधियां हम लोग पूरे महीने भर चलाएंगे, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्सव की तरह हम लोग मनाएंगे और सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और इसको अच्छा कार्यक्रम।
22: फाइलेरिया के छिपे संक्रमण की पहचान के लिए अब जिले में रात के अंधेरे में रक्त की बूंदों से बीमारी की तलाश की जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुचायकोट प्रखंड को छोड़कर जिले के सभी 13 प्रखंडों में नाइट ब्लड सर्वे आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक अस्थायी और दो अस्थायी साइट चिन्हित की जाएगी, जहाँ रात के समय रक्त के नमूने लिए जाएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के रक्त की जांच होगी। रक्त संग्रह का काम रात 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे से पहले चयनित स्थलों तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार कराने तथा समुदाय को फाइलेरिया से बचाने और उपचार से जुड़ी सेवाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। बैकुंठपुर के मीरा टोला में एक अवैध क्लिनिक पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी को शिकायत मिली थी और जनता दरबार में मिली शिकायत के बाद उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह को यहां जांच करने का निर्देश दिया था। उन्होंने अवैध क्लिनिक में छापेमारी कर औचक रूप से जांच किया, जहां स्थित डॉक्टर भी बिना पंजीकृत पाए गए। साथ ही वहां मेडिकल दुकान का भी संचालन हो रहा था, उसके भी कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद वहां के डॉक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साथ ही क्लिनिक और वहां के स्वास्थ्य केंद्र को सील किया गया है और इसमें आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि उस क्लिनिक में भर्ती एक महिला मरीज को आईवी के जरिए दवा दिया जा रहा था। महिला मरीज को भी वहां से पीएससी बैकुंठपुर में ट्रांसफर किया गया और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाल श्रम के विरुद्ध भी आज अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के मोनिया चौक स्थित एसएस होटल और कररिया स्थित सन्नी आयरन रिपेयरिंग सेंटर में श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी की। दोनों जगहों से एक एक बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। साथ ही नियोजकों के खिलाफ अब FIR दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत के पनशाला बंगरा गांव में देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद सुबह पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों की रजामंदी से बगल के काली मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। युवक की पहचान हेमू छपरा गांव निवासी हरेंद्र दास का पुत्र रूपेश कुमार बताया जा रहा है, जबकि युवती की पहचान बंगरा गांव के ही निवासी विसुंदेव दास की पुत्री अमृता कुमारी है। दोनों के परिजनों ने रजामंदी से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दुल्हन प्रेमी के साथ उसके घर चली गई। बताया जा रहा है कि अमृता के घर से करीब 200 मीटर उत्तर रूपेश बाइक गैरेज चलाता है और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हो गया। देर रात रूपेश अमृता से मिलने उसके गांव पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। सुबह पंचायत बुलाई गई और दोनों की सहमति के बाद काली मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया। इस दौरान सरपंच पति शंभू शर्मा, उप मुखिया पति गुड्डू सिंह, वार्ड सदस्य संजय शाह समेत तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे और इसका एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए 11 लोगों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा। इसमें शराब की तस्करी और कोर्ट के द्वारा जारी वारंट तथा हत्या के प्रयास में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज बलथरी चेक पोस्ट पर एक लग्जरी बस से 63 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को जब्त किया और उत्पाद पुलिस की इस कार्रवाई में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी आकाश सिंह बस का चालक है। यह राजस्थान के पाली जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा सह चालक सोने राम शर्मा मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। तीसरा सनी कुमार खलासी कन्नौज का निवासी है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शराब और बस को जब्त करने के बाद अब तीनों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हथुआ थाना क्षेत्र में 22 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हथुआ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जापुर के पास की, जहां से एक स्कूटी से 22 लीटर शराब मिली। इस मामले में आरोपी सोनू कुमार पिता मुन्ना राजभर साकिन लकड़ी देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी है और दूसरा एक महिला है। दोनों को गिरफ्तार कर अब दोनों पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इनकी स्कूटी और शराब को जब्त किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने माधो मठ में पूर्व के पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की घटना में कार्रवाई की है। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए घायल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया और महिला के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी कर एक आरोपी अमन राम उर्फ अमन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह थावे के भेड़िया का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण पुलिस ने प्रथम दृष्टिया बताया कि पीड़ित द्वारा अभियुक्त को 30,000 रुपए दिए गए थे। उक्त राशि वापस मांगे जाने पर पीड़ित द्वारा अभियुक्त से संपर्क किया गया, जिस पर अभियुक्तों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह घायल हो गया। इसके बाद पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर श्रीरामपुर गांव में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सनोज कुमार पिता कृष्णा ठाकुर साकिन श्रीरामपुर थाना माझा का निवासी है। इसके घर तलाशी लेने पर एक लाल रंग के प्लास्टिक के थैले में सफेद पुड़िया में 20 पुड़िया गांजा जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने जब्त किया है और इस मामले में 3 चाकू भी आरोपी के घर से बरामद किए गए हैं। अब चाकू और गांजा को जब्त कर पुलिस ने आरोपी सनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सदर अस्पताल में गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मी ड्यूटी से गायब मिले, जिनसे सो कॉज मांगा गया है। साथ ही संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जानकारी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि अचानक इमरजेंसी और आईसीयू की व्यवस्था की जांच करने के लिए सिविल सर्जन मोहम्मद इजराइल पहुंचे। एक एक बिंदुओं पर उन्होंने जांच की, जिसमें कई कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिन पर अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। 12 तारीख को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। हालांकि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अभी से ही स्टॉल लगा दिए गए हैं। अगर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के यहाँ किसी तरह का चालान से संबंधित वाद है तो आप अभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पोषण जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने किया रवाना। फैलेरिया मरीजों की अब रात के अंधेरे में होगी तलाश।

0: आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपति मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: Excuse me, boss. You have a text message.
1: हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, इस शो से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है, आप तो जानते ही हैं सभी कि पुराने गाने की फरमाइश इस कार्यक्रम की जाती है, तो पुराने गाने की फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और अपने पसंद के गाने के साथ इंजॉय करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कुछ, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना चाहता हूँ। और गाने का बोल है, हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सूर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फरमाइश इस सप्ताह में पूरी नहीं किए हैं क्या? हमें तो लगता है कि आपके गाने हम सुनाए हैं शायद। तो आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो, कैसे हैं आप? और मुझे सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है, भूल ना सकोगे मुझे भूल कर तुम। और इस मैसेज को करती हैं सोनी सरेवर नंबर 1 गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश को पूरा करने की कोशिश है, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग यदि गाने जल्दी सुनना चाहते हैं तो एक ही मैसेज करके स्थिरता बनाए रखें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज लिखा गया है कि मेघनाथ माझी जी, सर मुझे थानेदार फिल्म का गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हेलो सोनू भैया, माय नेम इज तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। और तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और मैं ब्यूटी परवीन गोपालगंज से, और बहुत निमन गाना बा, इसलिए आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश जी विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा गाना बजना चाहिए। बिल्कुल बजेगा यदि आप लोग की फरमाइश इस सप्ताह में आज के दिन बीते दिनों में नहीं सुनाए होंगे तो। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कई, तो मैसेज को रुकते हैं और फिलहाल गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और गाने प्ले करते हैं सोनी की। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है, भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज पहुँचाए हुए हैं मेघनाथ माझी जी, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं। थानेदार फिल्म का गाना सुना दीजिए, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। क्यों जी, आपके गाने हम प्ले करेंगे। कुछ और भी मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज देखा जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा गाना तो बिल्कुल आपका भी गाना बजेगा। और आगे मैसेज, सर क्या हाल है, आज तो मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिए। मैं सन्नी पटेल, तो बिल्कुल आपका भी गाने के फरमाइशी तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम अंकुश कुमार, पता गोपालगंज से जुड़े हुए हैं, और गाने के फरमाइश करते हैं, सासों की माला जपते जपते। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, मुझे सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पता कुछ नहीं बताए हुए, तो अपना तो परिचय दे ताकि आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर पाएँ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है, गाने का नाम है जियो हो बिहार गला। सत्यम जी जुड़े हुए हैं श्यामपुर से, तो बिल्कुल सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं पल्लवी कुमारी नरेनिया मीरगंज से, और कृपया मेरा भी गाना सुना दीजिए, मैसेज करते हैं। तो चलिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल बढ़िया है। और आपका मैसेज हमारे पास पहला भी पहुंचा हुआ है, अभी भी पहुंचा हुआ है, आपकी फरमाइश हम ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो, हाय, नमस्ते। और इस मैसेज को करती हैं, कहते हैं कि मुझे भी बर्थडे का सॉन्ग सुनना है, निशा भारती विलेज उझोलिया उंचका गांव प्रखंड से, तो बिल्कुल आपका गाना प्ले होगा, और थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मेरा गाना सर, अरे अभी तो मैसेज हमारे पास आते जा रहे हैं, अभी एक ही गाने हम सभी सुने हुए, आप स्थिर रहे, आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नाइस सैड सॉन्ग, सही बात है, याद तो आएगी। मैसेज करते हैं निशा शुक्लवा से, कई मैसेज अभी हमारे पास पहुंचते जा रहे हैं, तो मैसेज को रोकते हैं और अगले गाने भी हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, क्योंकि गाने भी सुनने हैं और मैसेज के साथ एंजॉय भी करना है।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि सिर्फ सिर्फ आप बोल रहे हैं, प्ले करने का कोशिश। तो बिल्कुल हम बोल तो रहे हैं, गाने के फरमाइश प्ले करेंगे, समय हमारा जो निर्धारित है उतना ही में जितना हो सकेगा उतना। और इस मैसेज को करते हैं सन्नी पटेल जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थानेदार मूवी से लाजवाब सॉन्ग MD 97 दरभंगा भजीतपुर से, बस इसी तरह सुनाते रहिए सुनो भैया। बिल्कुल सुनाएंगे, आप लोगों का साथ रहेगा तो बिल्कुल मज़ा आएगा और मनोरंजन में एक दूसरे का साथ होना चाहिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं पल्लवी। तो बिल्कुल आपके मैसेज हमारे पास पहुंची है, आपकी फरमाइश तो पूरा करेंगे। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुंची है और इस गाने के फरमाइश

और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, माय नेम इज तृप्ति फ्रॉम नवादा गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है कोई तो है वो यार माहिया, आवारापन मूवीज का है प्लीज़ सुना दीजिएगा। डेडिकेट माई सिस्टर सुरभि भारती मैम और मनोरमा मैम एंड आपको। तो चलिए आपके गाने हम देखते हैं और सुनते हैं हम सभी। यदि पुराने होंगे तो ही गाने कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो बीच में रुक जाएगा और दूसरे किसी के गाने को प्ले करने की कोशिश की जाएगी। ये मेरे पास सुरक्षित रहेगा गाने को चेंज करने के लिए। तो आप सभी से हम हर रोज़ भी कहते हैं कि गाने के फरमाइश जब भी करें तो पुराने गाने का फरमाइश करें, हमें लगता है कि आपके गाने नए ही होंगे। फिलहाल सुनते हैं, उसके बाद से इंजॉय करते हैं, पता तो चल ही जाएगा।

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके ओके, चल ठीक है, प्लीज।

रेडियो रेमझेम 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। और अगले मैसेज में लिखा गया है कि मुझे बर्थडे का सॉन्ग सुनना है, और कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे, और इस मैसेज को कर दिए निशा भारती वजवलिया उंचका गाँव परखंड से। तो चलिए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपको, और बर्थडे की सॉन्ग प्ले होगी कुछ मैसेज है, तो मैसेज देख लिया जाए। आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो सर, मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज लिखा गया है कि सॉरी, आपने मेरा गाना 31 तारीख को प्ले किया था, उससे पहले मैं गाँव गया था, उससे पहले फरमाइश ही नहीं किया, देखा जाए तो 10 दिन हो गया। सुनो जी, आप मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि आपके गाने प्ले नहीं हुई है, प्ले नहीं हुई है, तो बिल्कुल प्ले होगी। ऐसी बात नहीं है कि आपके गाने प्ले ना हो तो हम अभी गाने प्ले ना करें। फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करें, एक दूसरे गाने के बाद हम सुना ही देंगे आपके गाने। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू, चलिए आपको धन्यवाद है, और आगे से ध्यान रखिएगा कि इससे भी पुराने गाने की फरमाइश करिएगा, कि आपकी फरमाइश की प्राथमिकता दी जाए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो प्लीज़, बिल्कुल आपके भी गाने हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज जुड़े हुए हैं, बड़रिया थाना क्षेत्र बालापुर से सनोज कुमार जी, आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, और आपके फुल मैसेज शामिल करने की कोशिश रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
0: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 8784।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचाए हुए हैं रोहित जी देहरादून से और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सुर, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे और भी मैसेज पहुँचे हुए देख लिया जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि लास्ट बार प्लीज़ प्लीज़। बिल्कुल, इसके बाद आपकी फरमाइश हम प्ले कर देंगे, एक गाने सुन लीजिए फिलहाल। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सर आज भी मेरा सॉन्ग प्ले हो पाएगा कि नहीं, कोशिश है। और इस मैसेज को करते हैं सन्नी पटेल जी और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाने का बोल है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। और चलिए आप लोगों की फरमाइश तो प्ले करने की कोशिश है एक एक करके, और आगे बढ़ते हैं गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रमझिम 94.4 एफएम पे।

94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यहाँ पे अभी हम सभी रोहित जी की फरमाइश सुन रहे थे, और यहाँ पे लिखे हुए हैं कि थैंक यू सो मच सोनू जी गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है। रेडियो रेमझिम सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आखिरी बार वार्निंग मिल रहा है, तो इतनी नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, इनकी मैसेज हम शामिल कर देते हैं और गाने की फरमाइश हम प्ले कर देते हैं। इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से, और गाने का बोल देती हैं पाँव में पायल पहन के मैं घुंघरू डोला रे डोला, और डेडिकेट करती है काजल पिंकी श्रिया सनम और सभी को, तो बिल्कुल सब कोई सुनेगा। और आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया कि सर आज भी मेरा सॉन्ग प्ले नहीं हो पाएगा क्या? बिल्कुल प्ले होगा, और थोड़ा सा सब्र कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया कि सर मेरा मैसेज को शामिल नहीं करिएगा क्या? काफ़ी देर हो गई, बिल्कुल शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ प्लीज़ कोशिश एक एक करके सबको फरमाइश हम पूरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा उतना पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमझिम 94 FM पे।

0: काफ़ी प्यारे सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो MCM 94.4 FM पे, और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो ही गया है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अंतिम गाने हमने कोशिश की कि पटेल जी की फरमाइश प्ले कर दें, लेकिन इनके तरफ से गाने की नाम ऐसी बताई गई है कि गाने मिल ही नहीं रहे हैं, और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं, और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। अंतिम गाने प्ले करते हैं, पल्लवी कुमारी नरेनिया अमीरगंज से मैसेज की है और गाने की फरमाइश की है, तू ही मेरी मंदिर तू ही मेरी पूजा। काफ़ी प्यारा सॉन्ग है, तो जो भी श्रोतागण छोड़ जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और फिर कल मुलाकात होगी इस अंतिम गाने के साथ। एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो MCM 94.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेकर उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो
4: हेलो। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो। हाँ जी, योगेश जांगड़े बेगूसराय छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी धन्यवाद।
6: नाम बता दीजिए।
5: योगेश जांगड़े बेगूसराय छत्तीसगढ़ से।
6: अच्छा, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है, अच्छे हैं।
6: तो क्या हो रहा था अभी?
5: अभी घर ही में है अभी।
6: अच्छा, मौसम कैसा उधर का?
5: मौसम बहुत धूप है अभी 2-3 दिनों।
6: अच्छा, तो ऐसे क्या करते हैं योगेश जी आप?
5: हमारा काम खेती बाड़ी का ही है।
6: अच्छा, चलिए बढ़िया। तो नाश्ता वास्ता हो गया आपका?
5: हाँ जी हो गया है।
6: चलिए ठीक है, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
5: फिल्म मोहब्बतें से सुनवा देंगे, हमको हमेशा चुरा लो।
6: क्या आप गा के बता सकते हैं?
5: गाने नहीं सुना देंगे, अगली बार सुनाएंगे जो भी फरमाइश रहेगा।
6: ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
5: सभी को, आप सभी के लिए भी।
6: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: जी धन्यवाद।
6: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: जी

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैडम, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: जी जी, कैसी हैं ज्योति जी?
1: बस बढ़िया है मैडम। बेटे आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: आज बहुत दिनों में फोन लगा है मेरा।
0: अच्छा जी, क्या पहली बार कॉल
1: किया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहली बार नहीं, कई बार लगा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं लगा रही थी।
0: अच्छा, हो रहा था?
1: अभी कुछ नहीं, बस खाना खा रहे थे और चल रहे थे।
0: जी जी, तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं खिलाइएगा।
1: खिलाऊंगी ना, आओ ना आप। आज अपने प्रेरणा की तरी की सब्जी बनाई है।
0: अच्छा जी,
1: हमारी गुड़िया का जन्मदिन है आज का नाश्ता।
0: अच्छा जी, तो उनको मेरे तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
1: थैंक यू मैडम जी। जन्मदिन के ऊपर से ही आज कोई सा गाना सुना दीजिए।
0: ओके, तो आप ही बता दीजिए
1: कौन सा गाना है। तो नाम नहीं आ रहा है।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम जी, अभी मेरा फोन कट गया था।
7: अच्छा
6: जी, मैं ज्योति साहू मधुसूदनगढ़ से।
7: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया हूँ मैडम जी, अभी खाना वाना खा के फ्री होके बैठे हैं। आओ आप भी खाओ खाना।
7: जी जी बिल्कुल आएंगे।
6: मैं मधुसूदनगढ़ से।
7: अच्छा
6: जी, अभी फोन लगाया था लेकिन वो कट गया, अभी इसमें आज ही बात हो रही थी ना इसलिए।
7: जी जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
6: ये गाना सुनूंगी, मूवी का नाम है संजोग
7: जी,
6: और गाने का बोले जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला।
7: क्या आप दो लाइन गा के बता सकती हैं?
6: जी, जसोदा का नंदलाला ब्रज का उजाला, मेरे लाल से ही तो सारा जग दिल मिलाया।
7: डेडिकेट भी है
6: जी।
7: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: थैंक यू मैडम जी, थैंक यू
7: जी। वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: मैम गाना सुनना है।
1: गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
0: सुनीता देवी हल्दियापुर से। 21 तारीख को फोन किए थे मैम, और बीच में नहीं किए थे, भूल गए थे, समय भूल गए थे काम करते करते।
1: चलिए कोई बात नहीं, वैसे क्या हो रहा था?
0: मैम खाना खा कर बैठे हैं तो आपको गाना देखिए सुनाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, और तो छोटा वाला मोबाइल से सुनते हैं। आज सोचे का पहले बार लगाए, मगर पहले बार नहीं लगा, 10:49 से लगाए मगर नहीं लगा।
1: चलिए कोई नाम लग
0: रहा है। मैम खाना हो गया है?
1: हाँ हाँ हो गया है। और आपका?
0: मेरा भी हो गया है मैम। गाना सुनना है मैम, घर वाली बाहर वाली में के भोजपुरी में के जो शंकर भगवान को तीज करती थी उसमें के नहीं है?
1: थोड़ा सा गाने के बारे बता दीजिए।
0: भूल गए हैं मगर घर वाली बाहर वाली में के रानी चटर्जी है जो
1: रूप में।
0: हाँ जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, नमस्ते।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: बालबू सोना को
5: कैसन बानी?
6: ठीक बानी, आपने बताई के
5: हमने के भी ठीक बानी सन।
6: बारिश हुई?
5: बारिश तो अभी नहीं हो, मौसम बना होगा।
6: इधर तो हो रहा है बहुत ज्यादा।
5: कहाँ से बोल रहे हैं?
6: सुंदर तो सुंदरी।
5: अच्छा,
6: छोटी ना खोल बरसा भीजे।

0: गाना
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते। इन सबके साथ रेडियो 90.4
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू मैडम जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
0: जी, क्या हाल चाल है अरुण जी?
1: बस ठीक है जी, आप लोग कैसे हैं?
0: जी, हम लोग भी बढ़िया है। लो
1: जी, बस बढ़िया, कहीं जरूरत है? खराब नहीं, अच्छा रहे। हमको गाना सुनना है मैडम जी।
0: बता दीजिए।
1: ये गाना है आपको, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। ये गाना है, काली काली घटा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, वो आज मौसम है बड़ा।
0: तो अरुण जी, मुझे गा के बता सकते हैं दो लाइन?
1: मैं अपना भाई तो बराबर नहीं है ना, अपना भाई तो बराबर नहीं है।
0: कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे तो गाना तो बता रहे तो अच्छा लग रहा है, तो गाएंगे भी तो अच्छा लगेगा।
1: नहीं नहीं, ये गाना आप गवा दीजिए।
0: चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम आपसे गवाएंगे, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा ठीक है जी।
0: और गाना किसी को डेडिकेट भी करना है?
1: जी, अपना जितना भी रेडियो रिमझिम के श्रोतागण है और जितने भी स्टाफ है, सभी मतलब रेडियो रिमझिम के प्रेमी आदमी को सबको डेडिकेट करना।
0: ओके जी, ठीक है। तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी जी
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो,
5: हेलो। तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्ते दी।
5: नमस्ते, कैसे हैं?
6: राधे राधे।
5: राधे राधे।
6: और चलिए हमारा से भी भोजपुरी में बात करी रहा, और आवाज बड़ा नीक लगा था आजकल भोजपुरी में सुन के।
5: वैसे कहाँ से बोला था नहीं?
6: जी जी, हमारा नाम है रानी, हमार घर है रखुआ, और हम बड़ा दिन से रो तो सोचते रहनी बात करे के, आज फाइनली मौका मिला। और बताई रुआ कैसन वानी है? और ऐसे ही तो रेडियो पर आवाज नहीं तो काफी रुआ के सुन के सुकून मिलता और बहुत अच्छा लगा था जी।
5: अच्छा जी,
6: सच ना? और आज हम देखी रहो कहते सब चीज छोड़ के कहानी, आज देखा था नहीं किकरा से बात होता, बाकी अंत वाला तो सब वाला रहो से बात हो गई। देखी रहो से लिस्नर सब बात करे खाती कैचे भर भर के, ढाका भर भर के, सभी कोई खाली बात
5: करके बहुत अच्छा लगा।
6: और खास करके सच में रहुआ सबकी आवाज के पता ना रोवा लो, आरजे सब कोई तो खाना हुए खाला, बाकी रोवा लोग आवाज ये का इतना नीच लगा था समझे में नहीं की आवाज। थोड़ा बताई लो एक राज का बा?
5: राज तो कुछ ना बा, लेकिन वैसे बता दी थे राउत भी आवाज बहुत ही प्यारा बा।
6: अच्छा जी, कसर ना छोड़नी पूरा कर देनी
5: ना जन भाव बता दी हेला।
6: जी जी, और ऐसे में रहो के जब से हम सुना था नहीं, बीच में कॉल कर लेवानी तो 2 बार 3 बार 4 बार दीदी से बात बोलवा भारती दी से, और एक दिन बात वो तो झटका आ गए की हम जो वहाँ से बात भाई, तो फिर बात कहीं वहाँ से दी से देखा था नहीं, अब वहाँ से कब बात बोला, बाकी आज फाइनली बात हो गई।
5: हम भी रवा से बात करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड बानी।
6: जी जी, और खास करके रवा जब रेडियो ऑन आई यार आवे नी रहा, और आवाज बहुत मस्त बा जी। और रवा सभी के जितना अर्जे बानी लो, और रवा लो के बारे में हमने कहा बोली सर, जितने बोली से उतने कम पड़ गई।
5: आप रउआ लोग के
6: दुआ
5: जी, वो लोग के दुआ प्यार से हम ये के बोले निशान।
6: जी जी, और होके के चाहे जी होके के चाहे, और कहला किसा एक एक सवाल हर कोई के मन में उठेला, स्टार्टिंग में अगर हमने के कोई भी काम करी सन, अगर हमने में 1000 बुराइया हो, बाकी हर इंसान में एक अच्छाइया होला जी, तो सही बात। और रउआ लोग तो पूछे के नहीं के, और बताई रउआ नाश्ता वास्ता खेले बानी की ना?
5: हाँ हाँ भैया की ना,
6: और आज हम नहीं के भैया, आज थोड़ा हम लेट बानी, और सुबह से थोड़ा आज सोमवार तो आज थोड़ा काम ज्यादा होला।
5: और
6: जी, और खाए के केवल बात रही तो आदमी खाली, बाकी बिना अगरबत्ती जे रहले थोड़ा आदत नहीं छे, और यही के थोड़ा सा रुक के बाबा की अब बात हो जाए तब तुरंत वही काम बाकी बा।
5: जी जी, पूजा पाठ।
6: और बारिश होता रहो तरह?
5: बारिश तो नहीं छे वो अभी फिलहाल,
6: इन्हें होता थोड़ा बहुत।
5: अच्छा, वैसे कहाँ से बोलत बानी रहुआ?
6: जी, हमारा नाम है रानी और हमारे घर है रखुआ, और रहुआ जाने में थोड़ा दिक्कत होता, बाकी लोग जान जाये
5: ना। एक बार शो में पता चला हुए कि जे रानी नाम के जे लिसनर वानी बहुत अच्छा बात करेंगी, और बहुत देर तक बात
6: काफी दिन दिव्या दी से बात भई रहो पर काफी रिएक्शन मिले रहे। और दी एक बिना देरी की अगर इजाजत हो तो एक लाइन हमरा बोले के बाद, अगर वो कहीं तो हम बोली, और सारी जो भी कुछ बात दो लाइन वो लिसनर के बारे में हमरा बोले के बाद, अगर तो खैर हमके वहाँ के नाम पता नहीं है, बाकी बड़ा शिद्दत से वो हमारी जौन 2 लाइन भोजपुरी में वो गाना गाई, बड़ा जबरदस्त गाना गाई दी। और सच बताई तो हम वहाँ के रिकॉर्डिंग सुनते रही, खाना बनाई, बाकी हम अपन खाना छोड़ के वहाँ का ताली बजाई रही जरूर।
5: अच्छा जी।
6: और जी जी, और वहाँ के जितना भी बात दर्शैले रही बड़ा जबरदस्त दर्शैले रही दी। और काफी सबसे बड़का चीज ये लग रही जो मैं अपन नाम भी दर्शैले रही, गाँव के भी नाम दर्शैले रही, जी माँ हमनी के जो सबसे बड़का थावे के मशहूर माता जी वानी वो दर्शैले रही, तो वहाँ के काफी सुन के बहुत अच्छा लग रही थी। और कभी भी इंसान के कम चाहे ढेर तो हर कोई के अंदर एक गुण होता बा ना, बोला ना, तो कभी वहाँ के अंदर बात कभी ओकरा के सामने ले आवे के चाहिए। वहाँ के बहुत अच्छा से गई हिंदी, बहुत अच्छा से गई। और हमने की हिंदी में कितना बात कर ली सब, की जन भोजपुरी की जन मिठास होला ना, ओकर एक अलग भाषा वाला दी, पूरा दिल के झकझोर देला।
2: बात तो बिल्कुल सही कहा।
6: और सच अरे वही बात बोला ही ना, और माफी मांगते रही तो बेकार लग रही थोड़ा सा। ऐसा कोनो बात नहीं कि इंसान अगर जो भी कुछ बोले ला वो अपने दिल से बोले ला, तो अपने लगन और मेहनत अपनी आवाज के दम पर बोले ला। और वहाँ के बहुत अच्छा से गई, और इतना हमारा जानकारी बाबू महाराष्ट्र से कॉल कैले रही, और वहाँ के बहुत अच्छा गीत गई दी, बहुत अच्छा गीत गई।
2: अच्छा,
6: और अब टाइम ऐसे में तो सब चीज छूट जाओ, एक दिन खाना छूट जाओ, बाकी रेडियो ना छूटे के चाहिए।
2: अच्छा इतना लगाओ,
6: इतना लगाओ, बचपन से सुने नहीं ना अपना शो के बारे में, जाओ चीज पूछिए हम बता दें पूरा। 100 से स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूछे हम सब बता दें। और एमए से कितना अर्जी गर्ल बानी लो लेडीज में, आदमी की सब जानकारी बा, और बहुत शो सुन ले बानी से दी। और स्टार्टिंग हम हिती चुकी से सुने नहीं शो वालों के, बाकी जुड़े नहीं बहुत कम।
2: देखिए रउआ शो में बराबर जुड़ल करी, कैसे की रउआ से भी हम सब जुड़ल बानी से, और बात करे के जन तरीका बना बहुत अच्छा लगे हम सबके।
6: अच्छा जी। और देखिए हम एक तो बात बाती, हम बड़ में बहन में बड़ बानी, और हम सबसे जिम्मेवारी ज्यादा हमारा ऊपर रहला। छोटी सी हम बात रोज से बताओ तनी, और जोन हमारा माँ की थोड़ा तबियत खराब, हमने के काफी सरस्वती पूजा से पेट से लेके अभी तक ले माँ के तबियत बहुत जोर से खराब रहला, और वहाँ के थोड़ा सा हार्ट की बीमारी रहला, और हमने के पूरा घर भर के परिवार मानी एक पल खातिर टूट गए रहनी वैसा। बाकी अब भगवान की दुआ से आप सभी के आशीर्वाद से सब चीज ठीक बावे
2: जी जी भगवान, और सब ठीक हो जाए।
6: और वहाँ के हार्ट के ऑपरेशन भइल बा तो थोड़ा वही में हमने की ज्यादा दिकदारी रहला, बाकी अब जुड़े और रवालों के बीच में जरूर आए सामने।
2: जी जी बिल्कुल। तो फिर आज के का फरमाइश बारा
6: जी, और आज मौसम बहुत प्यारा है, भोजपुरी संग बजा दी वो गाना बाबा न बोल, ना जाने का हो गई बा आज
2: क्या बोला के बता सक रही हूँ।
6: बिल्कुल बिल्कुल, और रवा गाई अगर हम ना गाई रवा कहती तो पूरा निछावर बा, खाली रहो इजाजत चाहिए।
2: बाप रे इतना ज्यादा लगाओ।
6: बिल्कुल बिल्कुल, रवा सब बर्थडे बानी हो लाइक तो लगाओ तो रही थी ना।
2: अच्छा जी, तो फिर सुना दी दुलाई गा के।
6: जी जी, और हम गा के सुना देते नहीं रोवा के, और चलिए आवाज तो गाना के माध्यम से पता ना जैसे भी जाए, बाकी रोवा करती जरूर।

0: धड़केला, ये सॉन्ग सुनने के बाद
1: तो साथ साथ गाना भी इतना अच्छा गा नहीं है।
0: अच्छा जी, और वो जब अपना आवाज से कहे नहीं को लिस्नर से के थोड़ा दो लाइन गा दी तो सोचे निकासो मौका पर हम रहती बाकी चली आज और तसल्ली के पूरा कही नहीं।
1: हमके भी बहुत अच्छा लागल।
0: अरे गाना जितने हमने की तारीफ करी सब भोजपुरी में सबसे पहले लिस्ट में ये गाना हमारा बहुत अच्छा लागल दी।
1: अरे गाना रहा क्योंकि सुनाए के भी चाहता नहीं।
0: जी जी, और हमारे कुछ रेडियो दोस्त बानी लोग सभी के तो सुनाए चाहता नहीं। और सबसे पहले रोगा के इतनी मीठी आवाज में बात करे खाती और आज खुद से बात कर लेनी वो खाती रानी की तरफ से, और भारती दीवानी, दिव्या दीवानी और सोनी दीवानी और सोनू सरवानी और हम उनकी सबसे प्रिय एक आपका कहीं से डायरेक्टर सर के उनको के बानी वहाँ के संडे के दिन जब आवे नी तो बहुत अच्छा से बात करे नी हमने की लगे एक फैमिली के जैसा उनको के बानी तो उनको के गाना में रानी की तरफ से। और कुछ रेडियो दोस्त बने लो जी, कमरान जीवानी, भास्कर जीवानी, उत्तम सोनी जीवानी, सगीर जीवानी, बर्जी जीवानी, इरफान जीवानी, अहमद अली जीवानी, दिलीप राम जीवानी, पंकज जीवानी और शाहजहां जीवानी, सन्यासी रंजन बाबा जीवानी, राकेश जीवानी, देवेंद्र जीवानी और उमा शंकर जीवानी और बाकी जितने लिसनर छूट गए लो रानी की तरफ से सब कोई के सवार है। और मुकेश जीवानी
1: जी जी बिल्कुल, ये सब हम के परिवार हैं लोग है ना।
0: समझी एक सब आदमी एक रेडियो के डोर से बनाइल बा और सभी के एक दूसरे के सुन के बहुत सुकून मिले लादी।
1: जी जी बात तो सही बराबर,
0: बात तो सही बा
1: जी। तो रानी जी फिर गाना प्ले करता नहीं कैसे कि और भी कॉल आवता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एमएस पूछे वाला बात नहीं क्या। और
1: वैसे तो रोगा से बहुत सारा बात करे के मन करता है लेकिन अगला आदमी भी तो पड़ी ना।
0: और सच बताए दी जब कॉल के बारी आवेला ना सच में कहता नहीं, अगर कभी मौका मिले तो कभी लिस्नर बनकर कॉल करे
1: जी।
0: समझन जी लिस्नर सब के आपके प्रति कितना प्यार रहेला जोन कॉल करला के बाद जोन हालत होला ना हमने के तो क्या कोनो बात ना रहेला हमने के तो अगर चाहे तो 5000 कॉल कर सका था नहीं से कोनो लेना देना नहीं के जैसे केवल बात करे के चाहत में आदमी 50000 कॉल हिला दी बाकी मेहनत सफल जाला। जी चलिए बिना देरी किए हम गाना प्ले कर दी और आगे भी कॉल ली।
1: जी जी एक और बात बता दे कि हम बहुत खुश मानी रहुआ से बात करके।
0: सबसे ज्यादा तो राहुल रानी बारी सच सही तरह नीक बड़ा आवाज बा।
1: अच्छा
0: भोजपुरी में अक्सर लोग बोले लगाओ रवाजी बड़ा नीक लगा था जी।
1: जी जी बिल्कुल
0: चलिए आगे भी कॉल लीजिए।
1: जी जी तो प्ले करता नहीं सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हाँ भारती जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ बेंगलोर से।
5: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
6: बहुत अच्छे हैं। आपका प्रोग्राम सुनने के तो मन करता है हर दिन, इसलिए परमिश भी करती हूँ। उस दिन आपने मेरा गाना सुनाया, बहुत अच्छा लगा है।
5: अच्छा जी।
6: हाँ, आज मेरा घर में मेरा भाई भी आया है सिलीगुड़ी से, वो भी गाना सुनेंगे आज। तो बोल तो आज मेरा तो रिक्वेस्ट है सागर मूवी का, किशोर कुमार की आवाज में, सागर जैसी आंखों वाली एक गाना है ना।
5: क्या गा के बता सकते हैं?
6: हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, वो भी गाते हैं ना, वो गाना किशोर कुमार की आवाज में। तो गाना तो मैं डेडिकेट करती हूँ आपको और आपको परिवार, रिमझिम परिवार को, सबको लिसनर्स।
5: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ, कितने बजे सुनेंगे
5: ये गाना आपका? आज नहीं तो कल बजी जाएगा।
6: अच्छा जी, आप कैसे है?
5: ये मैं भी बढ़िया हूँ।
6: सोनी जी,
5: सब कुछ बढ़िया है?
6: ओके,
5: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: हाँ ठीक है,
5: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या कर रही हो?
1: जी बढ़िया बा, आपन बताई।
0: ठीक बा, के दवाई से चला था। ठीक बा,
1: छका हुई बा।
0: अरे ये सिर दर्द बुखार
1: सब मौसम की वजह से होता है।
0: कई दिन पहले पड़ता है, रोज ठीक पड़ा, फिर ठीक पड़ता दवाई
1: चली। दवाई वही टाइम से खाता नहीं हूँ।
0: हाँ जी, दवाई बड़ा दिन ठीक है, गरम दफे से ठीक पड़ा।
1: अच्छा
0: ठीक बने दो।
1: हाँ हम ठीक
0: बानी।
1: हाँ नाश्ता हो रहा और भैया चलिए बढ़िया। भाई से रुआ कृष्णा बोलते हैं ना?
0: जी मैं कृष्णा बोलते हैं।
1: जी
0: बंद हो गया जल्दी।
1: कुछ प्रॉब्लम हो गई वही की वजह से बंद करे के पड़ गए।
0: देखो नहीं चलो भाई को दुकाना बजे बंद कर दो मोबाइल लेकर दुकान बंद हुआ चालू कर ले रहे।
1: हाँ हाँ हम चालू कर रहे
0: हैं। रखा देखो शायर भेज रहे हैं।
1: हाँ चलिए कौन बात ना वहीं रही तो दूसरा दिन पड़ल गई।
0: हाँ
1: अच्छा
0: नहीं।
1: हाँ सुन जैसे कि हम इन्हें रहे तो भाती जी बताओ तो रही की भगवत तरफ से तो आज की फरमाइश बता दी।
0: अच्छा बारिश होता मैडम?
1: बारिश तो होता।
0: आपको ठीक लग रहा तो बता दो।
1: हल्का हल्का होता
0: आज बजा दी बड़का बरस चाहे बम बरस हो सारा से मिले खाती।
1: आना तो विजुअल बताइले बानी।
0: ये बारिश तो मतलब ये होता सब लेगा
1: बिल्कुल। चलिए तो फिर प्ले करते हैं वो गाना।
0: ठीक है
1: जी, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
2: कालिका स्टूडियो।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैडम, नमस्कार।
5: नमस्कार
6: जी मैडम, मैं आप
5: जी अब बता दीजिए कहाँ से बोल रहे हैं।
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
5: ओके जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया दीदी, आज तो हमारे यहाँ धूप खिल रही है, बरसात बंद हो चुकी है।
5: ये बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, आज तो बंद हुई।
6: जी
5: तो अभी क्या हो रहा था?
6: उसने मेरी दुकान पर बैठे हैं और रेडियो आज का सुन रहे हैं आपका रेडियो रिमझिम। और आज हमारी बेटी का जन्मदिन भी है, कनक साहू का।
5: जी तो उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो।
6: मैडम धन्यवाद। और आज उनके लिए गाना डेडिकेट रहेगा मेरी तरफ से।
5: जी
6: का नाम है अनाड़ी और गाने के बोले छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी।
5: ओके जी, ये तो सॉन्ग बहुत ही प्यारा है।
6: जी, और मैं हमारे बच्चों के नाम भी लेना चाहता हूँ।
5: जी बिल्कुल
6: जी, मिलन साहू, राशि साहू, रवि साहू, कनक साहू, पायल साहू, गौरव साहू और शुभम साहू की, शिवान साहू की, सभी बहन भाइयों के लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
5: ओके जी,
6: कब पहले होगा ये?
5: शाम को।
6: जी मैडम धन्यवाद आपका बहुत बहुत।
5: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ। अभी तो फिलहाल दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम।
0: कहाँ से?
1: दिल्ली से।
0: तो क्या हो रहा है?
1: काम हो रहा है अभी मैडम।
0: क्या करते हैं? जी
1: पेपर का काम करता हूँ, पेपर का मशीन चलाता हूँ।
0: अच्छा जी, फिर आज की फरमाइश क्या है?
1: जंगल लव का गाना सुनूंगा। लैला ने कहा जो मजनू से, रंझा ने कहा जो हीर से, वही मुझी से चढ़ गए।
0: क्या आप गा के बता सकते हैं?
1: लैला ने कहा जो मजनू से, रंझा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे कह दे तू आई लव यू। हेलो
0: जी, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: मैडम, सबसे पहले तो आपको सुनना चाहता हूँ। जितने भी मेरे श्रोतागण है रेडियो और इंजन का, सभी भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे दोस्त लोग सुनना चाहता है गाना।
0: अच्छा जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैडम,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार
7: सर, मधुसरिया से राजीव कुमार बोल रहे हैं, काम सुनना है।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
7: ठीक हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
6: क्या हो रहा है?
7: कुछ भी नहीं हो रहा है।
6: अच्छा, नाश्ता वास्ता हो गया?
7: खाना हो गया।
6: चलिए बढ़िया, तो फिर आज की फरमाइश बता दीजिए।
7: फरमाइश है, मुझे पीने की शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला।
6: डेडिकेट भी है
7: सुनने वाले सभी दोस्तों।
6: फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मेरा नाम जाकिर हुसैन।
1: कहाँ से?
0: बिहार गोपालगंज से मैम।
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: जादवपुर।
1: अच्छा जी, तो कैसे हैं आप?
0: मैं ठीक हूँ मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: मैं आपसे बात हुआ था ना बुध के दिन की, बुध के दिन जी मैम गाना सुनना चाहते हैं।
1: बता दीजिए।
0: जी मैम गाना सुनना चाहते हैं, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला जरा सूरत दिखला जाना।
1: क्या गा के बता सकते हैं?
0: अरे मैम तो वही गाना सुना दीजिएगा, सूरज का भी दूर गगन से, चंदा का भी दूर किरण से, ये गाना सुना दीजिएगा कोई भी।
1: ओके
0: ठीक है
1: जी जी।
0: और नाम लेना चाहेंगे दोस्तों को?
1: जी बिल्कुल
0: जी, मेरा दोस्त का सूफी आलम है, मोहम्मद कुक है, यूसुफ है, मेराज आलम है, और मुकेश शर्मा, संजीत, और एक मेरा दोस्त जितलेश शर्मा, धर्मेंद्र, बस इतने, और आपको भी सारे परिवार को पूरा।
1: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ जी मैम, इसको जरूर सुना दीजिएगा, जो गाना बताया वही गाना सुनाइएगा मैम, ठीक है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
2: हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: नमस्कार मैम।
6: नमस्कार,
5: मैं सुधीर पुर बोल रहा हूँ, करीमगंज जिला देवघर झारखंड से मैम।
6: जी जी, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
5: बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप भारती मैम बोल रहे हैं ना?
6: नहीं,
5: मनोरमा मैम बोल रही हैं।
6: जी जी
5: जी जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैम।
6: तो क्या हो रहा था?
5: समय हो गया, आज बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी मेहनत करनी पड़ी तब जाके कॉल लगी आज।
6: जी जी,
5: आज पुरानी फिल्म का गाना सुना दीजिए मैम। आने मिलो सजना फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में।
6: जी, और गाने के बोल।

0: गाने के बोल हैं तेरे कारण इस तरह के गीत बोल हैं मेरे साजन।
1: अच्छा,
0: उससे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ और जितने भी रेडियो रूम के प्रतागन है सबको सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 एफएम।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: कौन तो लगा रहे तो अभी लगल बरा और सब सुनाई समाचार।
0: जी सब बढ़िया बा, अपन
1: बताए।
0: इसे कहाँ से बोलो तुम रहुआ?
1: पंजाब से।
0: कहाँ से?
1: पंजाब। प्यार से।
0: पंजाब।
1: हाँ जी।
0: और नाम क्या बा?
1: परमात्मा कुमार।
0: परमात्मा
1: जी।
0: तो क्या हो रहा था?
1: हाँ जी।
0: क्या कर रहे थे अभी आप?
1: अभी तो काम कर रहे थे, लगाए तो शोर बन गई तो फिर अभी लगाइए काम पर।
0: कहा ना बहुत सारा कॉल आवत रहे तो एक वजह से।
1: जी जी जी जी बताओ तो नंबर।
0: चलिए अब लागल
1: बाना।
0: मौसम तो ठीक बा, सुहाना मौसम
1: भैया। इतना गर्मी पड़ता है कि बहुत गर्मी बा, बारिश पहले भी बारिश
0: नहीं। अभी तो मैंने धूप निकल रहा थी ना।
1: गाना सुना दे।
0: बता दे कौन सा बता सका?
1: दोनों गाना लगते
0: अच्छा। चलिए ठीक बा, क्योंकि सुनवाई के भी चाहता नहीं।
1: संतोष बिजली और जितना रेडियो रेंज सुनने वाला के सब के।
0: ओके तो फिर प्ले करते हैं जरूर गाना।
1: जी आज की दो दिन के बाद गाना हमारा लगा था।
0: हाँ जी बाजी।
1: आज बाजी।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी। तो प्ले करता नहीं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: जय हो पावन कुमार, तेरी शक्ति है अपार।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।